ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM. आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ. आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-048-935।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां घुमी ते पैरें नी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। मतलब सनराइज रेडियो आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं, आई होप आपको पता है। वेल डैब के जरिए आप सुन सकते हैं इन मैनचेस्टर, एट द सेम टाइम दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड देन देयर यू गो, इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं। और जो हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा, सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

welcome to yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. इस गाने को अपने पसंद किया होगा, ऐसी मैं आशा कर देता हूँ. मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा. अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ. तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां गलियां कुमी, ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

गल है जी, याद पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैं ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैं याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनु आज भी याद है। इन्ना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्राडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Nothing like the golden oldies. But right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. कहीं ना आप जाएगा. I'll see you on the other side of this hour. Stay tuned.

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
3: चाचा केड़ा चाचा
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कान सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
5: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
6: Can you

भी तो सोनी है, पर जो मेरी सोनी हैगी हैगी हैगी।

once again welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं, मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते हैं, काम के टाइम भी नहीं कर सकते हैं. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की जरूरत नहीं. जस्ट अ थॉट. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माई शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

Welcome back after this beautiful song, only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, डेडिकेटेड.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है सनराइज रेडियो 103.2 FM। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ के डॉक्टर आवर के बाद आपका है स्वागत वापस शो। मेरा नाम है आरी, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, व्हिच मींस दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। जस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे भी बहुत पसंद आ गया। मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर यू नो यू जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग फॉर दिस सॉन्ग, सो दिस वॉज वन फॉर मी। और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया।

0: उम्मीद ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्स लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। गुड बाय।

0: हजारों दुआओं मोहब्बतों चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों की ख्वाहिश के साथ नाहिद चट्ठा आपकी खिदमत में हाजिर हैं ये प्रोग्राम लेकर। ये प्रोग्राम जनाब जारी रहता है 11 से 2 बजे तक यानी के फ्रॉम 11 टू 2 एवरी सैटरडे हर हफ्ता के रोज मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर जिसमें आपकी अच्छी अच्छी सी बातें होती हैं। हमारे कुछ सिलेक्टिव गीत होते हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स होती हैं, थोड़ी सी शायरी होती है और कुछ मालूमाती बातें होती हैं, यानी कि हमारा डिस्कशन आवर होता है। तो समीन आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो। सनराइज रेडियो आप सुनते हैं 100.6 एफएम पर या 103.2 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डैब पर जनाब आप सुनते हैं ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में और मैनचेस्टर में, जबकि ईस्ट लंकाशायर में ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन और मिल्टन किन्स में आप ये प्रोग्राम्स सुनते हैं और डाबी में भी हम जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। अगर आप हमें इन सब स्टेशंस पे ना पा सकें तो आप हमें पा सकते हैं हमेशा हमेशा 24/7 जनाब ऑनलाइन। वेबसाइट है www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio। जी सामीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में, जिन्होंने नहीं सुना वो अब सुन सकते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जैफ और डॉक्टर अहमद। डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद होंगी। आप अगर कोई मेंटल हेल्थ के बारे में सवाल करना चाहें तो आप ऑन एयर भी कर सकते हैं, जो कि टाइम होगा 1 से 2 का। लेकिन अगर आप उससे पहले कुछ सवाल करना चाहें और आप ऑन एयर नहीं जाना चाहते किसी भी वजह से, तो आप मुझे फ़ोन करके स्टूडियो में 01274-30666 पर फ़ोन करके आप मुझे अपना सवाल नोट करवा सकते हैं, तो मैं आपका सवाल आपके बिहाफ पर डॉक्टर से, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से पूछूंगी और फिर आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मेंटल हेल्थ की जो इशू है जनाब, वो तो है हमारे साथ हर वक्त हमारे इर्द गिर्द, और बहुत दफ़ा हम खुद सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते। जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, लोग हम पे डिपेंड करते हैं, लोग दे लुक अप टू अस। समटाइम्स हमने ख़ानदान का बोझ उठाया होता है लेकिन जो हमारे साथ गुजर रही होती है हम नहीं जानते कि हम किससे वो कहें, हम उसको किस तरह से मैनेज करें। तो इस तरह के बहुत से अनकहे अनपूछे सवालात रह जाते हैं हमारे अंदर और हम खुद ही कई महाजों पर लड़ते लड़ते एक ये महाज भी खड़ा कर लेते हैं अपने लिए कि हमने अपनी वेलबींग किस तरह से ठीक रखनी है, हमने अपने आप को ज़हनी तौर पे किस तरह से तंदुरुस्त रखना है। हमें समझ नहीं आती है, हम कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, कभी दिल करता है, दिल घबरा रहा है, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत सी चीज़ें इंसान है ना महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ गुजरती हैं। तो मुझे तो लगता है कि कुछ लोग तो बेचारे हैं ही मेंटली चैलेंज्ड, उनके पास डायग्नोजिशन हैं, उनके डायग्नोज हो चुकी हैं, तशखीस हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी चेकअप भी नहीं करवाया, वो चेकअप करवाना भी नहीं चाहते, शायद डायग्नोस भी ना हो, तशखीस भी ना हो, लेकिन जो इंसान के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी होता है उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होती है कि मुफ्त में कोई डॉक्टर हमारे लिए 2 घंटे के लिए बैठे। डॉक्टर्स की तो मिनटों के हिसाब से फीस होती है, लेकिन हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जैव और डॉक्टर अहमद हमारे लिए ये टाइम निकालते हैं. मैं उनको, अगर वो सुन रहे हैं, पता नहीं वो चल पड़े हैं घर से, कार में सुन रहे हैं, तो उनका मैं दिली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमारे लिए ये टाइम निकालते हैं और वो फ्री में आके हमें मशवरे देते हैं. तो मैं चाहूँगी मेरे तमाम सामेईन, अगर वो ख़ुद किसी कश्मकश से गुजर रहे हैं या वो देखते हैं उनके इर्द गिर्द कोई है, तो ज़रूर उनसे सवाल करें, उनको कॉल करें. क्योंकि अगर कोई आता है इतनी दूर से और स्पेशली टाइम निकाल के, क्योंकि ये लोग 5 दिन काम करते हैं 9 to 5, और ये जो काम वाले लोग होते हैं वीकेंड्स उनके लिए बहुत बड़ा ख़जाना होते हैं. एक एक घंटा बुक्ड होता है कि हमने इस दिन ये करना है, इस घंटे ये करना है, सुबह ये करना है, शाम करना है, फिर भी वो हमारे लिए आते हैं, तो हमें उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए. तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप उनको टेलीफोन कॉल्स करेंगे या उनसे अपने सवाल पूछेंगे या एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट करेंगे जब वो आएँ. तो सामेन, बड़ी लंबी गैल हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि हम बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब, और हिट ऑफ द आवर के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात. हमारे साथ रहिएगा, साढ़े नाल रहना जी.
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: वेलकम बैक समीन। आपने सुना गीत हमारा जो के था हिट ऑफ द आवर, हया हो एंड पे। तो समीन, इस गीत के दौरान हमारी बात हुई हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर तारिक भट्ट साहब, जो ड्यूसब्री से कॉल इन्होंने की। बहुत शुक्रिया तारिक भट्ट साहब आपकी टेलीफोन कॉल का, प्रोग्राम को सराहने का, पसंद करने का। आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड वाजिद, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम हडर्सफील्ड, यू कॉल्ड मी एज वेल। और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आप दोनों के लिए अच्छी सी पोइट्री होगी जो कि हमारी एडवर्ट ब्रेक के बाद होगी। आप लोगों को अच्छी सी पोइट्री सुनाई जाएगी और गीत सुनाए जाएंगे, ये। तो ऐसा करते हैं कि पहले कर लेते हैं टाइम चेक। टाइम चेक के बाद हमारी होगी ब्रेक। ब्रेक के बाद जी असी वापस आवेंगे तड़े नाल तड़े कोल तानू चंगे चंगे गीत सुनान वास्ते। साढ़े नाल रहना, पहले ऐ देख लेने हैं टाइम की हो गया।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी जनाब, हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:15 यानी कि 11:15 सवा ग्यारह, समझते हो ना जी। हम बढ़ते हैं अब हम अपने कमर्शियल ब्रेक की जानेब। कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
4: गलियां कुमी, ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
4: चाचा? केड़ा चाचा?
5: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

वेलकम बैक समीन जी, आपकी जो एडवर्ट ब्रेक थी वो आपने सुन ली। अब मैं कुछ शायरी सुनाऊंगी, उसके बाद खूबसूरत सा गीत। शायरी है जनाब पंजाबी की, वाजिद अभी नहीं बाथरूम जाना, लास्ट टाइम मुझे पंजाबी की शायरी का बोल के आप चले गए और बाद में मुझे आके बोला कि मैंने सुनी ही नहीं। पला हो जाए भाई, ऐसे तो ना किया करो ना। तो अभी आराम से बैठ के सुनो, ओके, फिर कहीं जाना है। ओके जी, शायरी कुछ यूँ है जी। मैं झूठा बंदा दुनिया दा, मैं झूठा बंदा दुनिया दा, तुसी सच्चे हो चलो मन लिया। सब दो दो चेहरियां वाले ने इस गल नू पल्ले बन लिया। तुसी जीते, जित मुबारक हो, तुसी जीते, जित मुबारक हो, मैं हारियां दे विच चंगा वां। जे चंगे तुआडे वर्गे ने, जे चंगे तुआडे वर्गे ने, मैं माड़ियां दे विच चंगा वां। जी हाँ, मैं झूठा बंदा दुनिया दा, तुसी सच्चे हो चलो मन लिया। सब दो दो चेहरियां वाले ने इस गल नू पल्ले बन लिया। तुसी जित जित्ते, तुसी जित्ते, जित मुबारक हो, मैं हारियां दे विच चंगा वां। जे चंगे तुआडे वर्गे ने, मैं माड़ियां दे विच चंगा वां। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं खूबसूरत गीत की जानिब।

जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा साहेब। वो कहते हैं ना, यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, मुझको तो इस दौर के इंसान से डर लगता है। जिसकी हर बात में पोशीदा हो नश्तर की चुभन, जिसकी हर बात में पोशीदा हो नश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिबे

इंसान से डर लगता है। जनाब, अब है हमारे पास थोड़ा सा टाइम जिसमें हम जल्दी जल्दी से सुनते हैं गीत शाजिया मंजूर की आवाज़ में, जन मेरे मखना। ठीक है ना, एंजॉय करो जी।

0: चन मेरे मखना, हाँ जी चन मेरे मखना के एक पल हंस के है इधर तकना तकना ते टाइम तो थोड़ा है लेकिन दो लेस देन मिनट तानू जल्दी नाल ए पोएट्री सुना देनी है तकने ते ओ तकदा है भुल जांदा है वो तकदा है भुल जांदा है अगला बंदा रुल जांदा है सड़क ते ओ टुरदा है एवें जिवें नहर च फुल जांदा है फिर की होया जे मैं रोया फिर की होया जे मैं रोया भरिया भांडा डुल जांदा है समय बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है हमारे साथ रहिएगा
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: गलियां घुमी ते पैरां दियां जुत्तियां वी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना चाचा केड़ा चाचा चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना ए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कै नतीला सिर्फ दो पौंडना कन्न सलाने ना इक पौंड छापां ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेटा पर देने ने एक बारी फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274 4895

0: वैसे ये कितनी मजे की बात है ना, जो गाने के एंड पे कह रहे होंगे दुम तारा वैसे ये जॉब अच्छी है, मुझे मिल जाए ना मैं हर गाने में पीछे कहूँगी दुम तारा और बहुत खूबसूरत गीत था, उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। ये तारिक जुल्फी जी की तरफ से उनके दोस्तों और तमाम सुनने वालों के लिए और मेरी तरफ से नाहिद जी के लिए। तो अगला जो हम गीत प्ले करेंगे वो होगा हमारा मेहती हसन का गीत। वो क्यों? इसलिए कि हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर, बहुत अच्छे भाई शकील भाई बर्ली से उन्होंने कॉल की और हमें बताया कि आज मेहंदी हसन साहब का बर्थडे है। हाँ जी, उनका जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर मीडिया से ही ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट ना दिया जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो हमारा फ्लैशबैक गीत होगा वो आज होगा मेहदी हसन साहब की आवाज़ में। और शकील भाई, बड़े अफसोस की बात है कि आपने जो मुझे गीत बताया, जैसे ही आपकी कॉल बंद हुई मुझे स्ट्रेट वे भूल गया, मेरे ब्रेन से खुद ही डिलीट हो गया। कुछ सेटिंग मुझे लगता है कि ब्रेन की ख़राब हुई हुई है, तो मैंने कुछ और गीत चूज़ कर लिया है। अगर आप मुझे दोबारा बता दीजिएगा तो मैं दोबारा उसको आप वाला गीत भी ढूंढ के प्ले करूँगी। तो ये जो ब्रेन की सेटिंग होती है ना, इसके ख़राब होने से तो बहुत काम ख़राब हो जाते हैं जनाब। इसीलिए क्योंकि इतने सारे अंदर पेच टिल्ले ने, हालात ही ऐसे हैं जनाब, एक एक शख्स कई कई महाजों पे जहनी तौर पे लड़ रहा है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम कह पाते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम अंदर ही अंदर सहते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगे 12 से 2 बजे तक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जैफ और डॉक्टर अहमद मौजूद होंगी। और आप सोचें कि ये जो मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स हैं, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, कितने एक्सपेंसिव है इनसे अपॉइंटमेंट्स लेना और इन कितना मुश्किल है अपॉइंटमेंट लेना पहले, तो उसके बाद कितना एक्सपेंसिव होता है ट्रीटमेंट। लेकिन ये दोनों अल्लाह के नेक बंदे फरिश्ते हैं जो हमारे लिए 2 घंटे का टाइम निकालते हैं, और उन्होंने आज भी 2 आवर्स का टाइम निकाला है और वो हमारे साथ मौजूद होंगे पूरे 12 से 2 बजे तक। 12 से 1 बजे तक वो कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो कुछ ऐसे सवाल जो मुझे लोग दे चुके हैं उनके बारे में मैं उनसे सवाल करूँगी। और अगर आप फ़ोन करना चाहें डायरेक्ट उनसे, कुछ पूछना चाहें, तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा 01274306666 पर, यानी कि 6868 है ना 01274306666 हमारा स्टूडियो का नंबर है, आप हमें ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा। वो होगा जी हमारा ऑन एयर लाइव कॉल्स का टाइम 1 से 2, लेकिन 12 से 1 अगर आप ऑफ एयर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगी टाइम चेक की जानिब। टाइम चेक के बाद हमारा है जनाब कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद फ्लैशबैक गीत जो कि मेहदी हसन की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने बताया हमें। और हीरा खान जी, आपकी तरफ से ये गीत भी आपके तमाम दोस्तों और सुनने वालों के नाम होगा। बहुत शुक्रिया हीरा खान जी आपकी कॉल का भी। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइम चेक की जानिब।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हाँ जी सामीन, टाइम शैम हो गया है जी, 11:46 यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 11। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।
2: Sunrise Radio.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
6: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
5: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
6: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
7: Official media partner, Sunrise Radio.

जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, ये तो बात है जनाब, ऐसा तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हमने जो मेहदी हसन का गीत था स्पेशली आपके लिए प्ले किया उनकी सालगिरह पे, उनके बर्थडे पे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। शकील भाई, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये जी हीरा खान साहब की तरफ से भी तमाम सुनने वालों के लिए और उनके दोस्तों की नज़र था। वैसे वो अपने दोस्तों को ये नहीं कह रहे हैं, अच्छा बुरा मत मान जाइएगा, लेकिन गीत बहुत अच्छा था। तो ऐसा करते हैं, इस गीत के बाद इब्रारुल हक को सुनते हैं। क्या ख्याल है, हो गया नहीं प्यार, इंजॉय कीजिएगा।

0: वेलकम बैक सामिन, हम दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के सेकंड आवर में। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डेप पर जनाब आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में और मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर में है जी, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन और मिल्टन कीन्स में, और जल्द ही हम लॉन्च करने जा रहे हैं डार्बी में। तो अगर आप इन सब स्टेशंस पर हमें नहीं पा सकते तो पा लीजिएगा जनाब, चाहत हो तो ढूंढ ही लेते हैं कहाँ पे जी, वेबसाइट www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio। मैं हूँ आपके प्रोग्राम की मेज़बान नाहिद चट्ठा, मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 टू 2 यानी कि 11 से 2 बजे तक। हमारा प्रोग्राम भरा होता है खूबसूरत नगमों से, गीतों से, प्यारी प्यारी बातों से, अच्छे अच्छे कॉलर से, कुछ पोएट्री से और कुछ बातों से, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है डिस्कशन आवर, जिसमें आप लोगों के साथ डिस्कशन होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आज के हमारे डिस्कशन आवर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो अपना टाइम निकाल रहे हैं, वो हमारे साथ अभी से मौजूद होंगे ठीक 2 बजे तक। तो हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर, यानी कि टॉपिक्स होंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद होंगी और हमारे साथ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जैव मौजूद होंगे। हमें चाहिए कि हम इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करें, अप्रिशिएट करें कि उन्होंने हमारे लिए ये टाइम निकाला, क्योंकि आपको पता है ना कितना औखा होता है बड़े लोगों तो टाइम लेना। तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इन मेहमानों का जो हमारे साथ मौजूद होंगे। आपके जहन में कोई सवाल हो मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने बारे में, जो आप किसी से नहीं पूछ सकते, ओपनली टाइम नहीं ले सकते, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना कि हम इग्नोर कर देते हैं अपने आप को, हम वो करते हैं कि पहले ये काम कर लें, उसका ख्याल रख लें, इसका ख्याल रख लें, घर वालों का, दोस्तों का, अहबाब का, अपने आप को हमेशा हम पीछे धकेलते रहते हैं अपनी मेंटल वेलबींग को। अगर आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको गुस्सा क्यों आ जाता है, आप कुड़ते क्यों रहते हैं, आपको रोना क्यों आ जाता है, जो चीज़ें हम किसी से कह नहीं सकते, अपने दोस्तों से भी, मैं भी बहुत सी चीज़ें होती हैं वो कह नहीं पाती हूँ, लेकिन आप हमें फ़ोन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी। अगर आप ऑन एयर बात नहीं करना चाहते तब भी आप हमें ऑफ एयर फ़ोन करके हमारे जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और उनसे, डॉक्टर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द कोई आप देखते हैं कि कोई पर्सन है जो स्ट्रगल कर रहा है, या किस तरह से उस तरह की मेंटल एग्जॉशन से और मेंटल इश्यूज से बचा जा सकता है, आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा स्टूडियो में 01274306666 पर, और हम आपसे बात करवा देंगे या आपका क्वेश्चन ले लेंगे या फिर आप ऑन एयर चले जाइएगा। मैं फोर्स नहीं करूंगी अपने लिसनर्स को कि आप ऑन एयर आके बात करें, क्योंकि समटाइम्स मेंटल हेल्थ के क्वेश्चंस होते हैं ऑन एयर, लोग नहीं करना चाहते, रिकग्नाइज ना हो जाएं या फिर मे बी अदर रीजंस हों, तो आप हमें ऑफ एयर भी कॉल कीजिएगा, तो मैं आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बिहाफ पे डॉक्टर से पूछ दूंगी। तो ऐसा करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब। हिट ऑफ द आवर के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: अज मेला वेखन आई हाँ कुड़ियाँ लौट दियाँ। हाँ जी फिर लौट दियाँ कुड़ियाँ की तो गल ही होर है। अपनी तारीफ कर रही हूँ। जनाब आपने ये सुना हमारा गीत जो कि था हमारा फ्लैशबैक गीत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलर्स का। जब्बार जी आपके टेलीफोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, और जनाब चौधरी मुजफ्फर जी आपकी टेलीफोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप हमें कॉल करते हैं, प्रोग्राम को सराहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू जी। किस तरह मूवी में कैसे कहते हैं थैंक यू जी। तो ऐसा है कि अगले गीत पर जाने से पहले चंद अशार अपने तमाम लिसनर्स के नाम। इंजॉय कीजिएगा। कुर्बत से नाशनास रहे कुछ नहीं बना, खुश रंग खुश लिबास रहे कुछ नहीं बना, अब कह कहों के साथ करेंगे इलाज इश्क, अब कह कहों के साथ करेंगे इलाज इश्क, हम मुद्दतों उदास रहे कुछ नहीं बना, जिस रोज बेअदब हुए मशहूर हो गए, जिस रोज बेअदब हुए मशहूर हो गए, जब तक सुखन शनास रहे कुछ नहीं बना। है ना, इसी तरह ही लेना चाहिए। फिर से कहती हूँ। कुर्बत से नाशनास रहे कुछ नहीं बना, खुश रंग खुश लिबास रहे कुछ नहीं बना, अब कह कहों के साथ करेंगे इलाज इश्क, हम मुद्दतों उदास रहे कुछ नहीं बना, जिस रोज बेअदब हुए मशहूर हो गए, जब तक सुखन शनास रहे कुछ नहीं बना। जनाब बढ़ते हैं अपने टाइम चेक की जानेब। हमारे जो मेहमान हैं उनका फ़ोन आया है कि वो ट्रैफिक में स्टक हैं जी, और ट्रैफिक से जल्द ही निकल जाएं। वो पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में हैं, लेकिन ट्रैफिक में स्टक हैं। तो उतनी देर तक हम क्या करते हैं, जब तक वो आते हैं हम पहले टाइम चेक करते हैं, फिर हम एडवर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और फिर गीत लगाएंगे खास तौर पे हमारे मेहमानों के लिए। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुमको आना होगा जी। मेहदी हसन साहब की आवाज़ में डेफिनेटली, क्योंकि मेहदी हसन साहब का आज जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है, उनका बर्थडे है, तो उसको उनको ज़रूर हम ट्रिब्यूट देंगे। टाइम पहले चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक
0: जी। टाइम हुआ चाहता है हमारी स्टूडियो की घड़ियों पे ब्रेडफोर्ड और उसके मजाफात में 12:15 यानी के 12:15। अब हम बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानेब।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: तुमको आना होगा जी। साथ ही हमारे कॉलर मौजूद हैं यास्मीन, तो यास्मीन को हम पूछ बताते हैं कि यास्मीन आप ऐसा करना कि मुझे कॉल करना प्लीज़ थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं अभी अभी डॉक्टर्स मौजूद हुए हैं, अभी अभी वो आए हैं मौजूद हुए हैं, देखो ज़रा मेरी लैंग्वेज, अभी अभी वो तशरीफ़ लाए हैं बिकॉज़ वो ट्रैफिक में फंस गए थे और ट्रैफिक में स्टक हो गए थे। तो जैसे ही मैंने ये मेहदी हसन का गाना लगाया सारी ट्रैफिक क्लियर हो गई और फिर वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद एंड जैब।
1: वालेकुम सलाम नाहिद, और अपॉलोजीज इतना जो है वो ट्रैफिक में लेट होने के लिए, लेकिन आपने गाना ऐसा लगाया कि हम रुक नहीं सके और
0: थैंक यू जैब फॉर कमिंग।
2: नो थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स एंड सॉरी वी आर लेट बट वी मेड इट।
0: या थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप जैसे लोग टाइम हमें दे रहे हैं, यही मैं अपने लिसनर्स को बता रही थी कि हमारे जो इतने अच्छे इतने इल्म वाले लोग हमें तो डॉक्टर से या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से टाइम लेने के लिए, सबसे पहले तो टाइम लेना बड़ा औखा है, पहले तो हमें ये नहीं समझ आती लेना किवें है, किस तरह लेना है टाइम, और उसके बाद कितना एक्सपेंसिव होता है, और ये हमें फ्री में आके इतना अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हम कितने लकी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद, आपने टाइम निकाला। थैंक यू जाव, आपने भी टाइम निकाला हमारे लिए। हम आज ऐसा करते हैं कि अभी आप अभी अभी पहुंचे हैं, हमारी कॉल्स भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जाते हैं एक गीत पे और हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और हमारे कॉलर्स के लिए, लिसनर्स के लिए ये है कि अगर आप हमें स्टूडियो में फ़ोन करना चाहते हैं इस आवर में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01274 3066666 पर और अपना सवाल हमें दे सकते हैं। अगर आप ऑन एयर बात करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा सेम नंबर पे, यानी कि 01274 3066666 पर, सेम नंबर पे आप हमें फ़ोन कीजिएगा और हमें हम आपको ऑन एयर ले जाएंगे। ऑन एयर जाने का आवर होगा फ्रॉम 1 to 2। अभी से लेके 1 बजे तक हमारा जो टाइम होगा वो आपका आपके क्वेश्चंस जो मेरे पास पहले से आ चुके हैं, या फिर अगर आपने और क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो ऑफ एयर आप बात करेंगे। तो क्या ख्याल है डॉक्टर अहमद अंजैब, इज़ दैट राइट? तो अब हम करते हैं कि इनको आए ना, सबसे पहले इनको एक गाना सुनाते हैं, है ना फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम अपने इसकी जानेब, प्रोग्राम की जानेब।

0: जी सामीन बढ़ते हैं, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें क्या कर सकते हैं जी। एडवर्ट ही सुन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एडवर्ट सुनते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: जी सामिन, वेलकम बैक। आपने गीत सुना, एडवर्ट सुनी और इसके बाद हम हाजिर हैं। जी, अब हम बात करेंगे डॉक्टर अहमद से और जैप से कि दो चीज़ें हैं जिस पे हमने बात करनी है। एक तो हमने बात करनी है उन लोगों के बारे में जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से, इंडिया से, शादी करके आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या पढ़ने के अलावा जॉब के लिए आते हैं, यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, लोगों के रवैये उनको कितना तंग करते हैं और वो क्या क्या सहते हुए इन सब मुश्किल रस्तों से गुजरते हुए एंड अप होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ, कितने अफसोस की बात है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर अहमद, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि ये जो लोगों के रवैये हैं ये डैमेज ज़्यादा करते हैं या उनकी जो हार्डशिप्स हैं, जॉब नहीं मिल रही है या क्या क्या मसले चल रहे हैं, फिर यहाँ पर एडजस्ट करना, कम्प्लीटली न्यू माहौल, डिफरेंट लाइफ स्टाइल, वो बेचारे कितने बिखर जाते होंगे।
1: बिल्कुल नाहिद, हमने जैसे अभी हम बात कर रहे थे जब हम ऑफ एयर थे इसी मुतालिक के, जो हमारे जो आपके लिसनर्स हैं ज़्यादातर, उसमें जो आपके लिसनर्स हैं ज़्यादातर वो ज़ाहिर है हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जो कि बॉलीवुड सॉन्ग्स को सारे नो अपने हमारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स को इन्जॉय करते हैं, तो क्यों ना उनकी प्रॉब्लम्स को लेके बात की जाए। और हमारे पास लास्ट 12 मंथ्स में और उससे पहले भी हमारे पास क्वाइट फ्रीक्वेंटली एडमिशन हुई है ऐसे क्लाइंट ग्रुप की जो कि जिनके साथ इस तरह का सिनारियो था, जो पिछले 10 साल में या रिसेंटली मूव हुए हैं आइदर आफ्टर अ मैरिज या तो फिर जॉब सिचुएशन की सूरत में, और उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की हैं और हाउ दे एंडेड अप इन बीइंग एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल।
0: अच्छा, इस हद तक हो जाता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं बेचारे।
1: हाँ, और इसमें ऐसी भी बात है कि कोई जिसको सिर्फ साल भर हुआ है और बच्चा हुआ है और उसके बाद ये चीज़ देखी गई है, और उन लड़कियों पर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि इसको पहले से मेंटल हेल्थ इशूज़ थे और उसे बताए बगैर इन्होंने शादी कर दी, ऐसा भी देखा गया है। और ऐसी सिचुएशन भी है जो यहाँ ऑलरेडी कुछ सालों से हैं, उनके बच्चे हैं और उसके बाद ये इशूज़ डेवलप हो गए हैं, सो इट कैन टेक दिस लॉन्ग एज वेल। और फिर अगेन उन्होंने ये इस तरह का एक्यूजेशन फेस किया कि इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, विच इज़ अगेन क्वाइट ट्रॉमाटाइजिंग फॉर पीपल। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग अपना कल्चर, अपना मुल्क छोड़कर आते हैं और यहाँ वो नई जगह पर एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, वो किस ट्रामा से गुजरते हैं, और ये एक लंबा ट्रामा होता है जो अपने घर को, अपने घर बार को छोड़कर आकर यहाँ पे सेट होने के लिए और अपने लोगों में, नए लोगों में अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए और उनमें अपनी अपनाइयां ढूंढने में जो उनको प्रॉब्लम होती है वो उन्हें कहां तक ले जाती है, दैट्स अनदर स्टोरी।
0: लेकिन एक चीज और भी होती है कि वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यहां के जो लोग उनको लेकर आए हैं उनकी उनसे एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं जो वो मे बी किसी हद तक पूरी कर पाते होंगे, कुछ नहीं, और जो आते हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर हम इसको देखा जाए कि एक सेकंड मैं जरा अपना गला, तो ऐसा है कि जो देखा जाए कि अक्सर लोग वहाँ से आते हैं और वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है देखने का इसी मसले को कि वो लेकर आते हैं जी बड़े मॉल्स होंगे जाते साथ और हमने जो मूवीज़ में देखा है और वैसे सीन होंगे जी, हमारे आगे यूं गाड़ियाँ आके रुकेंगी, फ्लां होगा, ये होगा, वो होगा, और जब यहाँ आके आपको पता चलता है कि, और वो ऐसे घरों से भी होते हैं जिनके पास घर में सर्वेंट्स थे और ये सब, और उनको काम सारे खुद करने पड़ते हैं, उनके ना जो जो एक एक करके ख्वाब भी किरची किरची होते हैं, वो तो उनका अपना होता है कि लेस एक्सपेक्टेशंस रखें तो आप लेस डैमेज होते हैं, लेकिन ये होता है कि एक तो वो उस तरह से डैमेज हो रहे होते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो मीट नहीं हो रही होती, जिस तरह वो चाह रहे थे, जैसा वो सोच के आए थे वैसा नहीं हो रहा था, जो आगे जो लोग होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस उनसे जो होती हैं वो मीट नहीं कर पाते, तो इस तरह क्लैशेस भी बढ़ते हैं और फिर जो बंदा आया होता है सबसे ज़्यादा वो इसको सफ़र करता है।
1: बिल्कुल नाहिद, हमने ऐसा भी देखा है कि यंग इन हर अर्ली 20s कोई शादी होकर आई है एंड शी केम, और ये सब कुछ अपनी पसंद की शादी हुई है एंड बहुत हद तक उसकी एक्सपेक्टेशंस थी जो थी वो मीट हुई, क्योंकि फैमिली में उनकी जो थी वो जान पहचान थी और वो लोग जाने पहचाने थे और सब कुछ सही था, शादी भी हुई और बेबी भी हो गया, और उसके फौरन बाद वही बात जो आपने कही कि यहाँ घर, यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम, यहाँ की जो लोगों के साथ जो लोगों का रवैया होता है इंटरेक्ट करने का वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। वो बच्ची यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो किस मुंह से बोले, क्योंकि ये शादी उसकी अपनी मर्जी की थी, उसके जो थे वो ये सारा कुछ उसके उसकी मर्जी से हुआ था, बट शी वॉज नॉट एबल टू कोप. और वो इतनी ज़्यादा सिवियरली डिप्रेस्ड हो गई थी, उसे बार बार उसकी फैमिली वाले थे वो जो उसके लॉस थे, एंड दे वर ट्राइंग टू कंसोल हर, दे वर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल फॉर हर, लेकिन वो नहीं सेट हो पा रही थी. और उसके चूंकि इमिग्रेशन का प्रॉब्लम था, वो वापस भी नहीं जा सकती थी बिकॉज आई डोंट थिंक पासपोर्ट उसके पास था. और जब बेबी होता है तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम पोस्टनेटल डिप्रेशन के तौर पर जानते हैं, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि वो हमारे पास साइकोसिस के साथ आई थी. और उसके घर वाले मुसलसल ये कह रहे थे कि हम इसको, वो आ तो गई थी क्राइसिस में, पर वो मुसलसल ये कह रहे थे कि इसको डिस्चार्ज कर दे, हम इसे घर पे जो है ना डील कर लेंगे. तो ये हमारी ये पूरी जो हमारी कोशिश है, हम बैठ कर बात कर रहे हैं, वो इसीलिए ताकि लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस बढ़े कि किस वक्त आप ये बात समझ लें कि ये बात खुद से डील नहीं हो सकती. कम्युनिटी में स्टाफ आती है, कम्युनिटी टीम मेंबर्स आपको आकर देखते हैं, दवा भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब ऐसी हालत हो जाए कि एक बंदा जो है जिसने खाना पीना बंद कर दिया है और उसका बहुत ज़्यादा वेट ड्रॉप हो गया है, वो मुसलसल रो रहा है, उसे सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ रहे हैं, वो घर से निकल कर भागने की कोशिश कर रहा है, या वो अपने करीबी लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, और उसे जो दवा दी गई है जो कि कम्युनिटी टीम इन्वॉल्व होती है और देती है, वो काम नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में उसे मजीद घर पे रखना ख़तरनाक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. और सर्विसेज के साथ कॉन्टैक्ट करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, और लेट देम असेस द सिचुएशन एंड ट्रीट हिम और हर अकॉर्डिंगली. ये बात हमारे लोगों को समझ नहीं आती. जब क्राइसिस पीरियड होता है, एनी में विजिट्स होते हैं, एम्बुलेंस कॉल होती है, पुलिस आती है, उनको लगता है कि द क्राइसिस इज ओवर, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि दवा को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है. और इसमें सिर्फ दवा नहीं, इसमें साइको एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, जो कि लोग यूजुअली एक्नॉलेज नहीं करते.
0: ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बल्कि जेफ ने भी लास्ट प्रोग्राम में इस बात पे को हाईलाइट किया था कि मे बी ये रीज़न इसलिए होता हो लोग को इंसल्ट लगती है. जिस तरह जैफ ने कहा था, जैफ यू मेंशन दैट लास्ट टाइम, कि लोगों को इंसल्ट लगती है बताने के लिए कि हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा बेटा, हमारा दामाद, हमारा भाई हॉस्पिटल में है, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में, वो चाहते होंगे जल्दी जल्दी इसको ले जाएं.
2: यस एग्जैक्टली, बिल्कुल. दे स्केयर्ड, दे डोंट वांट पीपल टू नो अबाउट मेंटल हेल्थ. व्हाई शुड वी बी इन मेंटल हेल्थ, यू नो, लाइक व्हाई इज इट आवर फैमिली, व्हाई कांट आई बी आवर नेक्स्ट डोर नेबर. Like it's something that people don't want to discuss or talk about, even till today, it's still hidden in this people's houses.
0: Yeah, this is social shame ka ban gaya hua hai ek element ki agar aapke ghar mein koi person mental health se गुजर रहा है, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से, तो ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है. इस वजह से वो चाहते हैं कि ना ही हॉस्पिटल में हो, हमें मेंटल हॉस्पिटल के पास कोई ना देखे, हमें हम किसी तरीके से इसको घर ले जाएं और छुपा के इसका इलाज कर दें या इस तरह कर दें. तो ऐसा नहीं होता सामीन. अगर कोई बंदा किसी भी प्रॉब्लम से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, तो फौरन हमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, उनसे ज़रूर रابطہ करना चाहिए. और उनके लिए अर्ली द बेटर कहते हैं ना, जैसे मोटरवे पे अगर हम गलत मोड़ मुड़ गए, तो अगर जितनी जल्दी वापस नहीं आए तो फिर आप पहुंच जाएंगे किसी और शहर में. तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी इस चीज़ को आप फौरन रेकग्नाइज कर लें और उसको हम जल्दी से ले लें. क्योंकि मैं जहाँ सोशल सर्विसेज में वर्क करती हूँ, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज से आए हुए हैं शादी करके स्पेशली, तो हमारे पास मेजॉरिटी ऐसे लोगों की आती है कि मेन भी एंड वेमेन भी, जो एंजाइटी की मेडिकेशन ले रहे हैं, डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहे हैं. जब हम उनकी डैश रिक असेसमेंट करते हैं ना, रिस्क असेसमेंट, उसमें हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके पास सुइसाइडल थॉट्स हैं, आप डिप्रेस हैं, एंजाइटी है, तो उसमें वो हमें बताते हैं. तो ऑलमोस्ट 99% लोग जो होते हैं, जो हमारे उसमें होते हैं केस वर्क में, वो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ की मेडिकेशन, डिप्रेशन या एंजाइटी की ले रहे होते हैं.
1: तो ये जो मेडिकेशन आप कह रही हैं नाहिद, ये जीपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल बिगनिंग होती है. तो कोशिश यही होती है कि वो बंदा घर पे रहे और उसका इलाज घर पे रहकर हो, उसको असेसमेंट के लिए प्रोफेशनल्स घर पर आकर देखें और दवा उसकी चले, और उस हिसाब से वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर लेते हैं. लेकिन बाज़ दफ़ा असेसमेंट आपको चाहिए होती है ज़्यादा क्लोजली, क्योंकि वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो दिन में एक या दो दफ़ा आएंगे या आपको एक दो दफ़ा कॉल करेंगे. लेकिन जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो आप 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं और आपकी हर चीज़ मॉनिटर होती है और आपको प्रॉम्प्ट करने के लिए स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कि चीज़ों को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लेते हैं जो घर वाले नहीं कर सकते. दूसरा, अगर किसी मेडिकेशन चेंजेस की ज़रूरत होती है जो जीपी के हदूद से बियॉन्ड होती है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती
0: है. बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल.
1: और आई एम ग्लैड कि आप डैश असेसमेंट से आपका कनेक्शन है इस मुतालिक, तो आप जानती हैं कि जो जो हमारे यहाँ इवन डोमेस्टिक अब्यूज़ के भी जो केसेस आते हैं कुछ होता है तो उसमें मैरिक रिफरल होता है और डैश असेसमेंट्स होती हैं. तो आई एम ग्लैड कि आप इस बात से वो है जानती हैं क्योंकि आप खुद देख लें कि ये कितना प्रीवेलेंट है हमारे यहाँ. सिर्फ इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं, वैसे भी इतना प्रीवेलेंट है. और जो बात स्टिग्मा की आप कह रही थी कि जो जो है इस बारे में इसको तोड़ने की, तो हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश है इस तरह से आकर बात करना कि लोग इसको समझें. और इफ आई कैन रिमूव दिस वर्ड मेंटल आउट ऑफ दिस यू नो टर्मिनोलॉजी तो इतना मेरा बस नहीं चलता, क्योंकि इसको हमने एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म के तौर पर ले लिया है. तुम तो मेंटल हो गई हो, ये मेंटल हो गया,
0: ये एक इंसल्ट बना दिया गया है. हाँ, और वैसे भी आपस में भी बात कर रहे हो तो कोई बात किसी की ठीक ना लगे, तू पागल हो गए, दिमाग ठीक है तेरा, लाइक इसको एक इंसल्ट बना दिया गया है. और जाहिर बात है कि अगर किसी चीज़ को इंसल्ट बना दिया जाए तो फिर कोई भी बंदा उसके साथ एसोसिएट करने से डरेगा, झिझकेगा, हिचकिचाएगा, शेम फील करेगा, ऑफकोर्स बिकॉज उसको एक इंसल्ट के साथ एसोसिएट कर दिया गया है ना.
1: और सिर्फ वो उसकी इंसल्ट नहीं रहती, वो उसकी पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाती है. सोशल बायकॉट होता है, लोग कतराने लगते हैं.
0: exactly.
1: आपको अगर लोग पीछे बातें करते हैं और आपको विजिबली दिखता है कि देखो लोग बातें कर रहे हैं और इस तरह से, ये हमारा एज ए कम्युनिटी रिस्पॉन्स है जो कि अपॉलिंग है, बहुत ही ज़्यादा ऑफर.
0: जबकि जेस्चर्स ऐसे देते हैं, हा बेचारी, हाय हाय, इस तरह की चीज़ें जो करते हैं ना, तो फिर ज़ाहरी बात है कि कोई भी नहीं चाहता कि उसको बेचारा या इस तरह बेचारी कहा जाए या उसके पेरेंट को कहा जाए कि हाय तुम्हारा बच्चा ऐसे है, हाय बेचारी तुम तो इतनी ब्रिलियंट हो, तुम तो ये, तुम्हें ये को ये मिल गया, कोई बात नहीं. लाइक ये तसल्ली नहीं होती है, या आपको और डैमेज करने के तरीके होते हैं. समीन, हम बढ़ेंगे अपने ब्रेक की जाने, पहले टाइम चेक करेंगे, फिर ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, हमारा फ्लैशबैक गीत होगा, फिर हम वापस आएंगे. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अहमद अंजाब फॉर योर ब्यूटिफुल इनपुट.
3: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी सामीन, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:44 यानी कि 12:44, करीब ही 45 मिनट हो जाएंगे. हम बढ़ेंगे अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब. कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा फ्लैशबैक गीत और फिर होती है आपसे दोबारा मुलाकात. हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो.
4: सनराइज रेडियो.
5: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है.
6: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ. उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे.
5: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने. नहीं,
6: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.
7: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, लग रहा है कि आपका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम अब बात करते हैं सेल्फ हार्म पे। मैं प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत, जो हमारा टॉपिक है बहुत सीरियस है, जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है उनके लिए बहुत टची होगा, जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं उनके लिए भी बहुत क्या होता है ना कि दुखी करने वाला टॉपिक है। तो मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे चुटकुलों के साथ इसको थोड़ा सा लाइट रखूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद और हमारे साथ मौजूद हैं मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट चाव। तो हम इनसे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। हमने पिछले 15 मिनट में बात की थी, जो लोग पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी माइग्रेट करके आते हैं उनके मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में। तो बहुत हम सरफेस पे इसको टच कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सब चीज़ें कवर करें। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 8 मिनट, और हम चाहेंगे कि इसमें हम बात करें सेल्फ हार्म के बारे में, जो कि यहाँ पे टीनेजर्स में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही बच्चे सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो बहुत से केसेस सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में डॉक्टर अहमद क्या कहेंगी?
1: थैंक यू नाहिदिया। इट्स अ डिस्क्लेमर, अगर किसी को ये मामला बहुत सेंसिटिव लगता है और उससे कोई ट्रिगर होता है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि वो ना सुने। लेकिन ये सेल्फ हार्म का मसला बहुत ही छोटी उम्र में भी देखा गया है, इवन एज लो एज सेकेंडरी स्कूल, और ये बड़े लोगों में भी देखा गया है, और बाज़ दफ़ा ये थ्रू आउट लाइफ रहता है। इसकी शक्ल चेंज हो सकती है, इसका फॉर्म चेंज हो सकता है, इसकी सिवियरिटी भी कम और ज़्यादा होती है डिपेंडिंग ऑन हाउ व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन। और ये भी इस पे डिपेंड करता है कि आप के जो है वो आसपास क्या चल रहा है, आपकी ज़हनी हालत कैसी है, खुशी गमी। ये एक इंसान के की बाज़ दफ़ा ये आदत होती है, बाज़ दफ़ा ये नीड होती है, ये एक दफ़ा अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका भी बन जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है। पहली दफ़ा जब लोगों को, माँ बाप को ये दिखता है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें पता है कि जब हम सेकेंडरी स्कूल की, ना ही जैसे आपने बात की, हमें पता है कि सेकेंडरी स्कूल का माहौल, चाहे वो हमारे लोग बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, वी नो के ये चीज़ जो है वो हिडन या सर्फिस पे ये होती है। बच्चे बुलिंग से तंग होते हैं, बच्चे अपने पढ़ाई के और अपने जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उसके स्ट्रेस में आते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती है, वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने सोशल मीडिया पे दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी सॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट सेटिंग है कि इंसान को सोशलाइजेशन की ज़रूरत है। फिर वो उसको कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा उनके ऐसा भी होता है कि वो गलत किस्म के वेबसाइट्स को एक्सपोज होते हैं, जो कि उन्हें गलत चीज़ों को और गलत ग्रुप्स को एक्सपोज हो जाते हैं, जो कि आपको गलत सलाह देती हैं। बाज़ दफ़ा स्कूल में गलत इस तरह के दोस्त होते हैं जिनका अपना लाइफ एक्सपीरियंस इस तरह का होता है, वो इस तरह के मशवरे देते हैं, और बाज़ दफ़ा बगैर किसी मशवरे और इन्फ्लुएंस के बच्चा खुद ये बात ये इस तरह से शुरू करता है। और क्योंकि वो एक तरह का तरीका होता है बच्चे का या बड़े का ये बताने को कि मैं पेन में हूँ, वो एक तरह का पेन होता है जो या तो आपका जो फिजिकली वो फील करते हैं, सोशल साइकोलॉजिकल पेन होता है जो वो फिजिकली फील करते हैं, और उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए वो अपने आप को हार्म करते हैं। और ये हार्म जो है बच्चे को भी पता होता है या लोगों को पता होता है कि चूंकि एक्सेप्टेबल नहीं है या लोग इसके बारे में बातें करेंगे तो वो हिडन होता है, लेकिन फिर एक मौका ऐसा आता है कि वो फिर इतना एक्सटेंसिव हो जाता है कि लोगों को पता लगता है, पेरेंट्स को पता लगता है, और फिर दे हैव टू यू नो देन देयर इज मोर चांसेस फॉर देम टू कंसल्ट टू स्पेशलिस्ट।
0: लेकिन ऐसा भी तो होता है कि जैसे अभी ये खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके बच्चे नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं उसमें सेकेंडरी स्कूल में, और ईयर सिक्स ख़त्म किया है, ईयर सिक्स का ग्रेजुएशन हो गया है, बड़े खुश हैं, और फिर सडनली ये हो जाता है कि उनका वो ऐसा टाइम शुरू हो जाता है कि बच्चे समटाइम्स बुली होते हैं प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाके, रेडी नहीं होते मेंटली, सम बच्चे रेडी होते हैं। लेकिन आपने ये भी बात की कि जो वहाँ पे एडजस्ट होते हैं और वो कुछ पेन में होते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो जब बता नहीं पाते हैं तो वो इस तरह से रिएक्ट करने शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म के जो उनसे हैं केसेस सामने आते हैं, बच्चे छुपा के करने लग जाते हैं। और समझ नहीं आती ये बच्चा क्यों कर रहा है और वो बताते भी नहीं है, तो उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए और किस तरह से बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए कि वो अपना के अपने पेरेंट्स के साथ या घर में किसी को वो बताएंगे क्या हो रहा है?
1: नहीं, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि किस तरह नज़र रखनी चाहिए, माँ बाप को सिर्फ सुपरवाइजिंग अथॉरिटी या यू नो अथॉरिटी बनने के अलावा भी उससे नीचे उतरकर भी सोचना चाहिए। आपको जहाँ आपके अपने इतने सारे मसाइल हैं, यू आर प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, आपके पास 10 बखेड़े हैं, लेकिन अगर उसके बीच में आप ये भूल जाएंगे कि बच्चा अभी उसकी उम्र ऐसी है कि वो अपने आप को स्कूल में और उसके माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो बाकी बच्चों की तरह कूल बनने की कोशिश कर रहा है, वो उनकी तरह से अपना उनमें फिट इन होने की कोशिश कर रहा है, और जब वो नहीं कर पाता तो वो एक सोशल स्ट्रेस काफ़ी होता है। दूसरा, हमारे यहाँ का जो माहौल, और मैं आई एम ग्लैड कि क्योंकि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग सुन रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे के ऊपर जो पढ़ाई के ऊपर जोर होता है, जिस तरह का स्ट्रेस होता है कि आपने यही करना है और आप पहले मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तुम पर, या मैं ये कर रही हूँ और मुझे ये इस तरह के रिजल्ट्स चाहिए, ये स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो बच्चे के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट होता है उसके ऊपर। अगर बच्चे ने सारी ज़िंदगी मतलब अपने प्राइमरी स्कूल में अच्छा किया है, दे डोंट वांट टू यू नो टू डू डिफरेंट, और उनकी अंदर उनके बच्चे बड़े होते हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, उनके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनके माँ बाप उनकी बात नहीं समझ रहे, सो देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, और हमें लगता है कि ये बच्चा अभी तो ईयर 7-8 में आया है, ये बच्चा अभी है 13 साल का 12 साल का, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये बात नज़र ही नहीं आ रही होती कि हमें वी नीड टू बी फ्रेंड्स विद देम, और उनसे एक दोस्त के लेवल पर आकर उनसे ये पूछना होगा, बजाय इसके कि हम उनके लिए एक अथॉरिटी बने रहें।
0: और सोशल मीडिया भी पे भी बच्चे समझते हैं कि अब हम सेकेंडरी स्कूल में चले गए और अब हम बड़े हो गए, तो अब हम सोशल मीडिया पे जाएं और वो गलत साइट्स पे फिर चले जाते हैं और बैड इफेक्ट होता है उनके हेल्थ पे।
1: जी नाहिद, हमारे नॉलेज में भी आई है ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं बाकायदा जो कि जिनको आई थिंक अथॉरिटीज़ को उनको बैन करना चाहिए, दे आर सेल्फ हार्मिंग ग्रुप्स, एक दूसरे को मशवरे दे रहे होते हैं कि आपने कैसे सेल्फ हार्म करना है, और वो लोगों को बच्चों को इस तरह से कहते हैं कि यू बिलोंग टू अस, लाइक यू नो आप हम आपके दोस्त हैं ये हैं, और फिर उसके बाद इस तरह से होता है, इट्स you know kind of a culture going on in social media. Sab kuch galat nahi hai, sab kuch bura nahi hai, lekin bahut kuch bura hidden ways mein bhi ho raha hai. Bachcha aapse kaise disclose karega agar aap bacche ke dost nahi honge? Wo kya batayega ki band kamre mein apne phone ke upar apne iPad par wo kya dekh raha hai, kisko follow kar raha hai, kaun uski friend list mein hai? Maa baap ko bahut zyada interfere bhi nahi karna chahiye. It's very difficult to keep the balance.
0: Ha, aur saath mein aisa bhi hota hai na ki sometime hum bacche ko bataye bagair us pe nazar rakhte hain. For example, jab मेरी बेटियां थोड़ी बड़ी हुई और उन्होंने पार्टीज़ में जाने शुरू किया, जी फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, ये पार्टी है वो पार्टी है, तो मैं उन्हें कहती थी कि ठीक है, मैं उन्हें मना नहीं करती थी, मैं और उन्हें ये नहीं पूछती थी कि कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, वो चिढ़ जाते थे बच्चे, तो मैं ये किया करती थी, मैं कहती थी ओके बेटा मैं आपको लेकर जाती हूँ और मैं आपको पिक भी कर लूँगी और आपको इस तरह ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं होगा, वो खुश हो जाते थे, लेकिन असल में मेरा फ़ायदा ये था कि मुझे पता था वो जा रहे कहाँ हैं और पिक करती थी तो फिर मुझे तसल्ली हो जाती थी कि आ रहे कैसे हैं। तो हम आप बढ़ रहेंगे, हमारे पास 30 सेकंड है जैव, अगर आप छोटा सा बताना चाहेंगे कि किस हद तक केसेस आते हैं आपके पास सेल्फ हार्म के?
2: डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट सेल्फ हार्म एज वेल, लाइक सम पीपल गो टू सर्टेन एक्सट्रीम्स, सम कीप ए लो लेवल, दिस डिफरेंट ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ हार्मिंग, सम पीपल डू इट थ्रू मिसएडवेंचर एंड वी हैव सीन थिंग्स व्हेन दे गो रियली बैड फॉर पीपल, द फर्स्ट अटेम्प्ट कैन कॉज डेथ।
0: Oh my God! अच्छा ऐसा भी होता है?
2: Yeah, this first attempt can cause death and people don't expect it.
0: चले समीन, इसके बारे में हम बात जारी रखेंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, सुनते रहेगा सनराइज रेडियो।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
4: Andy Burnham's using this weekend to finalise his cabinet before he becomes Prime Minister on Monday. Home Secretary Shabana Mahmood is the favourite for the role of Chancellor, while Energy Secretary Ed Miliband's also been tipped for the job. The latest independent review of failures in maternity services has begun. Former midwife Donna Ockenden's launched her investigation into care provided at Leeds teaching hospitals. Daniel Ram's daughter Aliona died 27 minutes after she was born at Leeds General Infirmary following failings in her care.
5: This is the only way that we'll ever get to parent our little girl, and that's to make sure that actually what happens to her isn't in vain and that her life means something. And for us, that's making sure change happens.
4: A man's admitted killing one child and seriously injuring two others in a crash in Bedfordshire whilst being over the limit for drink and drugs. Jamie Fountain hit the three boys in Flitwick in April. A group of investors involved in a rescue bid for Thames Water are plotting a legal challenge if Andy Burnham tries to nationalise the company. Britain's biggest water firm could run out of money within weeks. Thomas Tuchel insists he wants to continue as England manager despite the criticism following their World Cup semi-final defeat to Argentina. He's come under scrutiny for his tactics after his team conceded two late goals. Even US President Donald Trump has criticised his approach, but Tuchel says that he stands by his decision.
6: I take, of course, the responsibility for these decisions, but the decisions are made under stress, the decisions are made in-game, this is in-game life coaching. I would regret if I didn't help, I would regret if we didn't react, but I have no regrets over the decision itself.
4: England face France in the third place playoff tonight. And a signed David Hockney print found inside a donated charity shop book has sold for more than £41,000 at auction. It was discovered nearly 50 years after being tucked away. That's the latest. I'm Imani Rana.
0: वेलकम बैक सामेन, हम वापस आ चुके हैं प्रोग्राम के आखिरी आवर में, यानी के आखिरी घंटे में। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो, मैं हूं आपकी मेज़बान नाहिद चट्ठा। हम सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पर अक्रॉस क्यों कह देती हूं हमेशा, है ना, मैंने अंग्रेजी नहीं आंदी, अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर जी। डैप पर हम सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर जिसमें ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन और मिल्टन कीन्स आते हैं। डाबी में भी जनाब हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप हमें नहीं पा सकते इन सब वेबसाइट्स, इन सब स्टेशंस पर, तो हम आपको मिलेंगे आपका इंतज़ार करते हुए। जी हाँ, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.sunriseradio.fm, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, या फिर www.sunrise.radio। जी, हमारा जो शो होता है 11 से 2 बजे तक होता है एवरी सैटरडे। हम अपने शो में जो प्रोग्राम का आखिरी आवर होता है वो होता है हमारा डिस्कशन आवर, जिसमें हम अपने शो में बात करते हैं किसी एक खास टॉपिक पर। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान, वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि वो हमारे साथ हैं और हमें बात कर रहे हैं हमारे साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और जो करंट इश्यूज़ हैं हमारे इर्द गिर्द, सब चल रहा है, हो रहा है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी मालूमात हमें फ्राहम कर रहे हैं। अगर आप फ़ोन करके उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस आवर में फ़ोन कर सकते हैं 01274-306666 पर। जी, आप ऑन एयर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आप ऑफ एयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जब मैं गीत लगाऊंगी या एडवर्ट होगी उस दौरान आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, तो मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगी और फिर हम इनसे, अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से और डॉक्टर से पूछ लेंगे। तो हम बढ़ेंगे, डॉक्टर साहब क्या ख्याल है कि हिट ऑफ द आवर पहले गीत सुन लें और उसके बाद फिर बातें करते हैं, ठीक है? गाने, हाँ, पहले गीत सुनते हैं।
3: सनराइज रेडियो, हिट आफ्टर हिट, द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो। सनराइज रेडियो, हिट ऑफ द आवर।
0: हेलो, हेलो,

0: जी सामीन, सॉरी दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे। मेरे कुछ दिल का आलम ये है कि गाना बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर मौजूद हैं, चौधरी रुखसार साहब। चौधरी रुखसार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
1: जी 110% बिल्कुल आवाज़ है, जैसे आप हमारे पास हैं। बिल्कुल
0: ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का। हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और जैव हमारे साथ मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे?
1: जी मैं ऑन एयर हूँ ना।
0: जी आप ऑन एयर हैं। जी
1: जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम। जनाब मोहतरमा मुकर्रमा मौज़मा अली जनाब इज़्ज़तमंद साहिब सदर ग्रामी कदर और हर दिल और मेरी नियत एहतराम काबिल इज़्ज़त काबिल रिस्पेक्ट काबिल रिफ़त नाहत ही मेरी प्यारी आपी नई जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात एंड गुड आफ्टरनून।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, और सारी तारीफें आपको भी वापस, क्योंकि मुझे तो ये याद नहीं होना। एंड गुड आफ्टरनून टू यू।
1: सबसे पहले तो मैं आपसे लास्ट वीक की माजरत चाहता हूँ, और आपने हुक्म किया था कि आप ऑन दिए रहें, लेकिन मैं यकीन करके जॉब पे था और अब भी मेरा खुदा जानता है और वो सुन भी रहा है और देख भी रहा है, लंच बॉक्स मेरे सामने बिल्कुल पड़ा है, लेकिन आपने हुक्म दिया था कि आप ऑन दिए रहें, तो मैं यकीन कर अभी मैंने लॉन्च नहीं किया, तो मेरी ब्रेक भी ऑफ द आवर होती है, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मेरी आपी का हुक्म जो है वो मुझ पर वाजिब और वाजिब है, और लास्ट में मैं इंशाल्लाह पाँच दो मिनट जाऊँ जरूर जाऊँगा। ठीक है,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतनी अच्छी बातें करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी सुने, इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि ये बातें ना सब तक पहुँचनी चाहिए।
1: ये तो आपका बड़ा पान और आला जरत है जो मेरे जैसे अदना आदमी को और इतने छोटे से तालिब इल्म को इस काबिल समझती हैं कि मैं कुछ अर्ज करूं। यकीन करें कि मुझ में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि मैं कुछ बयान कर सकूं। मैं तो ये कहते हैं कि आपसे और माशाल्लाह आपके अच्छे लोगों से और माशाल्लाह इतने अच्छे कॉलर आते हैं उनसे सुन सुन कर मैं कहते हैं ना वो रोड पर चढ़ा हूँ, यकीन करें।
0: नहीं, आपकी आजी इनकसारी है। अच्छा, तो आप हमारे डॉक्टर से कुछ पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका और आपके रेडियो का बेहद मशकूर और ममनून, जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए बहुत कम है, क्योंकि जिनके तवसल थे और माशाल्लाह मेरा नहायत अदब नहायत एहतराम और नहायत खलूस के साथ आपके साथ जो हस्तियां विराजमान हैं उनको मोहब्बतों भरा चातों भरा उल्फत भरा अकीदत भरा उनस भरा नहायत मोहब्बत से बहुत बहुत सलाम कबूल हो।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब।
1: सिस्टर आपका और मिस्टर जाब का बहुत बहुत शुक्रिया, और लेकिन यहाँ पे मुझे एक सवाल याद आ गया, लेकिन है तो थोड़ा फनी क्योंकि ये आपके बड़ा सीरियस है, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए कि बंदों को फ्रेशमेंट भी होनी चाहिए ना, कई हाल है।
0: अच्छा।
1: जैसे हॉस्पिटल में अक्सर हम जाते हैं किसी पेशेंट को मिलने के लिए, तो डॉक्टर जो फीमेल होती है उनको हम सिस्टर कह सकते हैं, सिस्टर ये है, सिस्टर ड्रिप लगा दे, सिस्टर इंजेक्शन लगा दे, तो डॉक्टर साहब को मेल को क्यों नहीं कहते हैं भाई डॉक्टर या ब्रदर डॉक्टर, उनको डॉक्टर साहब भी कहते हैं, इसका मुझे पहले जवाब।
0: नहीं ये तो आपका, मेरा तो ख्याल है मैं डॉक्टर अहमद के बिहाफ पे और जाव के बिहाफ पे इसका जवाब तो मैं ही आपको दे सकती हूँ कि असल में ये होता है कि हम जो अपनी बहनों का एहतराम करते हैं ना वो एक नेक्स्ट लेवल का एहतराम है, और वो जो डॉक्टर का एहतराम फीमेल डॉक्टर का एहतराम हमारे दिल में आता है तो हम उनको वो एहतराम देना चाहते हैं, और हम बताना चाहते हैं कि हम जितना हम अपनी बहन का एहतराम करते हैं हम आपका उतना कर रहे हैं। भाइयों का भी होता है लेकिन बहनों का एहतराम ज्यादा है जी, ये तनु मनना पड़ेगा। तो आप क्या चौधरी रुखसार भाई, आप क्या सोचते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं तो उनको जब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन किस तरह से वो मैनेज करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को वो सीख भी रहे होते हैं, नई चीज़ें देख भी रहे होते हैं, तो उन्हें कि वो ना इस मुश्किल में जाएं, आपने जब आप आए तो किस तरह से मैनेज किया?
1: यकीन करके ये सवाल जो है ना ये तो हमें इन डॉक्टर साहबान से पूछना चाहिए ना, क्योंकि ये जवाब सही तो यही दे सकते हैं ना कि जैसे चैलेंजेस होते हैं ना, यकीन करके बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता, वो जैसे आप पहले फरमा रही थी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था कि बंदा अपने जहन में तस्वर करता है, सोचता है कि यार मैं वहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे ये होगा वो होगा, तमाम जो सहूलतें होंगी वो मुयस्सर होंगी, जाते ही जॉब मिल जाएगी, जाते मैं ऑफिस में बैठूंगा ये टाई ये कोट ये सब कुछ पहन के तो ऐसे ही बैठा रहूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो ख्याली पलाव होते हैं, जब आए जाके आके मेहनत करें मजदूरी करें 8-8 घंटे बल्कि 12-12 घंटे 20-20 आवर आप जब जॉब करते हैं तो फिर पता चलता है।
0: तो आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे कि अभी भी आप उसमें से निकल आए हैं या आपको कोई ऐसी टिप चाहिए कि जिस पे हम अपने आप को इनसेन रख सकें, हम अपने आप को सेन रख सकें, अपने आप को अपनी ज़हनी उसको ले जा सकें। आपका हमने फ़ोन कॉल, हमारे साथ एक और लाइन पे भी मौजूद हैं चौधरी रुखसार साहब, अगर आप पूछना चाहें तो मैं आपके भी हाफ पे पूछूं, हम एक और कॉल भी ले लें।
1: जी मैं यही पूछना चाहता हूं कि प्लीज़ आप तो पहले मुझे, जब जैसे हमारी फैमिलीज हमारी बहनें आती हैं शादी करके, ठीक है, या हमारे बच्चे जो शादी करके यहाँ पे आते हैं, कि उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया जाता है कि नहीं जी हम आपको लेकर आए हैं लेकिन अब हम आप पर हाकम मुसल्लत हो गए हैं, जो हम चाहें वो ही करें, क्या ऐसा होना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपका ये सवाल लेती हूँ। इसके साथ ही एक और कॉलर है हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम फैसल, आप ऑन एयर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल करने का, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, क्या मैं इस वक्त लाइव हूँ? एम आई लाइव?
0: यस यू आर।
2: ओके थैंक यू। जस्ट अ क्विक वन, मुझे आप दो मिनट दीजिएगा, आज आपने इतना सोफिस्टिकेटेड क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक टच किया है कि इस पे अगर स्पीकर्स और बोलने वाले और पार्टिसिपेंट्स आवर्स एंड आवर्स भी बात करें तो कम रहेगा।
0: जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है।
2: ट्रस्ट माय वर्ड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस मुझसे पहले आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कॉलर जिन साहब ने किया, उन्होंने एक बात कही कि जब हम वहां से आते हैं तो हम सोच कर आते हैं कि टेबल चेयर टाई स्टार्ट द जॉब स्टार्ट द डे स्टार्ट द टाइम, ऐसा शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जो हम वहां से सुन सुना कर आते हैं बिल्कुल इज नॉट इवन 10 degrees 5 degrees 15 degrees, इज कम्प्लीटली 180 degree ऑपोजिट होता है जो हम वहां से सुन के सोच के और आते हैं जिस वक्त एयरपोर्ट से उतरते हैं।
0: बिल्कुल,
2: इसके अंदर दो डिविजन हो जाती है, एक मैरिड का होता है एक अनमैरिड होता है। जो मैरिड आते हैं, इफ यू सेटल अप इन अ गुड फैमिलीज गुड प्लेसेस, वो आपको इतना सपोर्टिंग होते हैं कि लिटरली आप यू समझ लीजिए कि हैंड इन अ टो के उंगली पकड़ के आपको ये इस तरह करना है, ये है, स्टार्ट फ्रॉम द क्लब कार्ड डिस्चार्ज रजिस्ट्रेशन, एक एक चीज आपको गाइड करते हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: और खुदा न खासिया इफ यू एंड अप इन काइंड ऑफ अ बिट ऑफ अ नॉट कंफर्टेबल फैमिली देन लाइफ बिकम्स हेल, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन फिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, जो मेजोरिटी के लिए मुश्किल होता है।
0: तो अगर ये बिल्कुल हमारे बहुत ही मोजेस कॉलर चौधरी रुखसार भाई हमेशा वो ऐसी ही बात का नुक्ता उठाते हैं जो कि वाकई काबिल गौर होता है, तो आपने भी यही बात की, तो आप डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे कि जब अगर ऐसा हो रहा हो तो हाउ टू कीप योरसेल्फ सेन। डॉक्टर साहब मैं फैसल भाई के बिहाफ पे आपसे ये क्वेश्चन करूँगी, एम आई अलाउड फैसल भाई?
2: Absolutely. मैं एक और चीज भी जरा से जस्ट अ क्विक वन बोल दूं, आपसे जरूर पूछेगा। इस वक्त बहुत बड़ा जो हो रहा है, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर पीपल आर मेकिंग वीडियोज एंड क्लिप्स एंड ऑल दैट कि दिस इज अवर लाइफ ऑफ लैंडिंग इन यूके, हम यू स्टार्ट करते हैं पार्टीज नाच गाना एंड वी हैव दिस एंड वी गो टू टेस्को शॉपिंग एंड एवरीथिंग स्टूडेंट वीजा पे आके। पाकिस्तान में बैक होम लड़कियां दे जस्ट प्रेशराइज देयर पेरेंट्स के देखिए वहां की लाइफ इतनी अच्छी है इतनी आसान है और हम वहां जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चियां जो वीडियो स्टूडेंट वीजा पे आके बना रही है, दे शुड इवन शो द नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ। यही नहीं कि वी आर हैविंग, ये भी बताना चाहिए कि वी आर शेयरिंग द रूम, वी आर शेयरिंग द सेम प्लेस, कि एक उठती है मैं उसकी जगह पर सोती हूँ, आई ट्रेवल 3-4 hours फॉर 8 hours शिफ्ट, हर चीज बताएं ताकि वहां से जो आने वाली बच्ची है दे डोंट पाइल अप मोर एंड मोर ट्रबल ऑन टू देम।
0: एग्जैक्टली,
2: ये बहुत बड़ी इस वक्त है, बहुत बड़ा इस वक्त जो डाउनहिल जो एक तरह का सिनेरियोस है वो यही है कि बच्चियां वहां से अट्रैक्ट हो रही है कि मम एंड डैड लुक इन दैट एक्स वाई जेड चली गई वहां पर, शी इज पोस्टेड द वीडियोस, लाइफ इज जस्ट लाइक हेवन, शी इज डूइंग दिस, शी इज हैव एंजॉयिंग हर लाइफ एंड दिस एंड दैट। वो इसे ब्यूटी के लिए दे आर पुटिंग द पॉजिटिव साइड ऑन, नेगेटिव नहीं दिखाती है। बहुत इतना सेंसिटिव टॉपिक्स है कि ये तो अगर कोई कॉलर कोई क्रिएटर कोई इन्फ्लुएंसर बनाना शुरू करे तो आई थिंक ये तो इतना सवाब का काम है कि दे कैन स्टॉप सो मेनी गर्ल्स एंडिंग अप इन दिस डीप वाटर्स।
0: एग्जैक्टली,
2: क्या करें हम आके फंस गए। के माँ बाप से हम लोन लेकर आए, कैसे क्या किया, बिकॉज नॉट एवरी वन इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून.
0: इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, कहीं उन्हें जेवर बेचा है, जमीन बेची है, और वो कह के आए हैं जी अब हम तो किस्मत बदल देंगे पूरे घर की. तो आप बिल्कुल, आपका पॉइंट मिल गया. थैंक यू सो मच फैसल फॉर योर कॉल, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट.
2: बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर ऑल द लिसनर्स. क्वेश्चन एंड माय डियर अपोलॉजीज इफ समबडी गॉट हर्ट, लेकिन ये फैक्ट्स है जो हो रहा है.
0: जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही. हम इस पर रोशनी डालते हैं, हमारा ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और इसके बाद हम डॉक्टर से बात करते हैं और जैव से बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है, किस तरह से अपने आप को इन हालात में संभाला जाए. अगर आप आ ही गए हैं तो आप डेफिनेटली. थैंक यू सो मच फैसल, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कॉल,
2: थैंक यू,
0: अल्लाह हाफिज़. जी सामीन, अब हम बढ़ेंगे, हमारी कमर्शियल ब्रेक ओवरड्यू हो चुकी है और साथ ही टाइम चेक करते हैं, कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और फिर आपसे होती है दोबारा बात, जो हमारे कॉलर्स ने क्वेश्चन किए थे, हमारे चौधरी रुखसार भाई ने और भाई फैसल ने, हम इनके बारे में बात करते हैं, इस इन बातों के बारे में. तो पहले करते हैं टाइम चेक.
3: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: टाइम हुआ चाहता है इस वक्त स्टूडियो की घड़ियों पे 1:18, 18 minutes past 1. कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा.
4: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत.
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक. गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं. टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1. टेलीफोन 7230303, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230303.

0: जी समीन, हम वापस आ चुके हैं अपने ब्रेक के बाद और हमारे बहुत ही अच्छे दो कॉलर्स जिन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट दिया, बल्कि हमारी डॉक्टर साहिबा भी यही कह रही थी कि दोनों ने बहुत अच्छी बात किया, चौधरी रुखसार भाई ने और फैसल ने, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू डॉक्टर साहिबा।
1: थैंक यू नाहिद। ये एक हमारा बहुत बड़ा सोशल अलमिया है कि ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है लेकिन ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम सोशल मीडिया में क्या देख रहे हैं। हाँ। अगर आप अपने आप को यू नो यू वांट टू बी इन द क्लाउड्स और आप ये देखना चाहते हैं, सिर्फ वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो सोशल मीडिया आपको पोर्ट्रे कर रहा है, इट्स वेरी इजी। चीज़ों को रिसर्च किए बगैर उसमें जंप मारना हमारी अपनी गलती है। अगर बच्चे आपको किसी तरफ बता रहे हैं और कुछ डिमांड कर रहे हैं तो चीज़ों को रिसर्च करना और उसके बाद कोई डिसीजन लेना, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। आजकल का जो यूथ है वो काफ़ी टेक सावी है और वो चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो ये बात सच है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं वो इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाइड होती हैं और इतना आसान बना के दिखाई जाती हैं और लाइफ इसके बिल्कुल बरक्स है। तो माँ बाप को एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, चीज़ों में जंप मारने से पहले चीज़ों को रिसर्च करना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है, एंड देर शुड बी अ प्लान बी प्लान सी। आप किसी एक चीज़ को रहकर आप हर चीज़ को उसके ऊपर बिल्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। अगर आपका कोई फैमिली

0: है और उसने अपनी अगली फीस भी जमा करनी है विच इज़ 10 times मोर देन द होम स्टूडेंट, वो भी उसने जमा करनी है, उसने कमाना भी है, उसने रहना भी है और पीछे वाले भी उम्मीद लगा के बैठे हैं अब जी अपने भाई को भी बुला लो, अपने बहन को भी बुला लो। अब एक पर्सन आ चुका है, जैसे फैसल ने कहा एक पर्सन आ चुका है, वो अब इन सारी उम्मीदों में इन सारी क्या उसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स में अपने आप को नॉर्मल कैसे रखे, उसको क्या करना चाहिए। अब वो पीछे वालों को मायूस नहीं कर सकता, अब उसको अपना आप भी सेव करना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है या अपनी जॉब भी करनी है, तो अब उसको वो क्या करे कि वो उसकी जो सी है वेल बीइंग ठीक रहे और वो बीमार ना हो जाए।
1: तो लोगों को सच्चाई, लोगों को रियलिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं जब जाऊंगा, मतलब आजकल के यूथ तो बहुत ज्यादा मतलब चीजों को समझ सकती है और अवेयर है, तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को सिर्फ ये क्यों लगता है कि मुल्क से निकल जाना ही हर चीज का सोल्यूशन है और आगे जिंदगी सब कुछ हरा हरा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। दिस इज नेवर द केस, क्योंकि आपके पास जो सोशल सपोर्ट है वो भी आप पीछे छोड़कर जा रहे हैं, आपके रिलेटिव थे जो आपके एक फोन पर आ जाते थे, आपके माँ बाप हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, अब आप पूरे अकेले हैं, आपने अपने आप को फाइनेंशियली भी संभालना है, आपको अपनी एजुकेशन का भी करना है और फिर पीछे 10 लोग बैठे हुए सोच के कि अब आप आगे कुछ करेंगे और फिर वो जो फाइनेंशियल जो भी जो डैमेज हुआ है वो पूरा हो जाएगा। सो हमें रियलिस्टिक होकर इस बात को सोचना चाहिए। अगर हम बात करें उस क्लास की जहाँ ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों को भेजते हैं, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। वो जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं दे आर ऑब्वियसली
0: टोटली डिफरेंट,
1: वो बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और उनको किसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। लेकिन हम जो वर्किंग क्लास के लोग जो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं या अपने बच्चों को भेजते हैं फॉर स्टडी और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसमें बहुत वक्त लग जाता है। बच्चों को भी इस बारे में या जो भी आ रहे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके के दे विल बी टोटली अलोन। पहली बात तो यह है कि जो लोनलीनेस है वो आपको खा जाता है।
0: दैट्स ट्रू।
1: वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास रोटी भी हो छत भी हो लेकिन लोनलीनेस आपको बहुत बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर सकती है।
0: बिल्कुल।
1: आपके सोशल सर्कल में अच्छे बुरे हर तरह के लोग आ सकते हैं। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कि किन चीजों से बचना है, किस तरह की एक्टिविटीज में नहीं जाना है। आपको इस बात का अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी चीज जब सही नहीं जा रही है तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट सर्विसेज, लाइक अपने GP के पास जाएं और उनसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आप ये बात अपने फैमिली से शेयर कर सकते हैं तो ये बता दें कि मैं किन प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, आपको अकेले नहीं कर सकते।
0: मैं यही बात का इंतजार कर रही थी कि आप ये बताएं कि इतनी करेज जो लोग आ चुके हैं, जब आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि इतनी करेज होनी चाहिए इंसान में कि वो कह दे कि भाई ये मुझसे नहीं हो सकता, हुन मैं आ गया वहाँ, हुन ए प्रॉब्लम्स नहीं थे, प्लीज़ मेरे को और एक्सपेक्टेशंस ना रखो, या फिर बता दें कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। पीछे वाले लोगों को परेशान भी नहीं करना चाहते।
1: मेरा ख्याल है जो जिन्होंने सेकंड जो कॉलर थे हमारे फैसल, उन्होंने ये भी बात कही कि सब कुछ आप सोशल मीडिया के ऊपर जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो इतना परफेक्ट है, दिस इज लाइक यू नो कि आप मर गए और आप हेवन में चले गए, कुछ इस किस्म का पिक्चर पेंट हो रहा है। लेकिन ये बात की सच्चाई क्या है, और सच्ची बात है मैंने बहुत सारे आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन, लेकिन मैंने बहुत सारे इंडियन रील्स भी देखी हैं जिसमें उन्होंने एक्चुअली बताया है कि हम इस कंट्री में आए लाइक जर्मनी और समवेयर और मेरा इतना जा रहा है महीने का, मुझे इतने घंटे काम करना पड़ रहा है, फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ और फिर उसके बाद स्टिल आई हैव टू गेट मनी फ्रॉम यू नो फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो इस तरह की वीडियोज भी आनी चाहिए ताकि लोगों को रियालिटी चेक रहे। और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है पीछे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको ये बोल सकें कि मुझसे नहीं हो रहा है।
0: What do you think, Jack?
2: No, I'm just like, I'm listening and I'm thinking to myself, like, okay, people from Pakistan and India and all these other countries come and struggle. But what about the ones that are here that are struggling? We've got youngsters here that are working 12 hours, 14 hours, rushing from one job to another job, trying to make ends meet, trying to pay for their student finances. They're working, they're studying, they're working. I know people in like Bradford itself, they're working 12 hours, 14 hours, manage to get 3-4 hours sleep back on their Red Bull.
0: Or yeah.
2: Tablets, trying to stay awake, trying to go to their next
0: job. So, ये तो हमने जितनी भी बातें की है ना, हमारे कॉलर्स ने भी और हमने भी, हमने बातें की हैं प्रॉब्लम्स की। आई वॉन्ट टू गो टू द सोल्यूशन, कैसे अब हम एक मुसीबत में फंस गए हैं, एक प्रॉब्लम में गिर चुके हैं, अब यहाँ से निकलना कैसे है। फर्ज करें ये स्टूडेंट जो अब आ चुके हैं या जो पाकिस्तान से या दूसरे कंट्री से आ चुके हैं, स्टॉक हैं, अब वो क्या करें अपने आप को मेंटली हेल्थी रखने के लिए।
1: अपने जब जहाँ पे जहाँ तक सोशल यू नो एनवायरनमेंट की बात है ना ही, हम बहुत कुछ तो जाहिर है नहीं बदल सकते अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, अगर एजुकेशन के कुछ आप

0: मतलब डेडलाइंस हैं, बहुत कुछ होता है ना सर पर. एक चीज तो नहीं होती जो कि वहां पर आप सब कुछ शेयर कर रहे थे घर वालों से, पेरेंट्स से, तो हर चीज तो जाहिर है एक साथ रिजॉल्व नहीं हो सकती. लेकिन इस दौरान अपने आप को, जैसे आपने कहा, सेन रखना, अपनी अपनी सैनिटी को सही रखना, अपने आप को, इंसान इस बात को, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो इस बात को जाने कि उसे अपने लिए कुछ वक्त निकालना है, उसे अपनी पर्सनल केयर को थोड़ा टाइम देना है. अगर आप 14 घंटे भी जॉब कर रहे हैं और आपके पास बहुत ही कम वक्त है सोने के लिए, तो आप ये, आप अपनी कोई हॉबी अडॉप्ट करें जो आपको पसंद है और आप उसमें अपने लिए वक्त निकालें. आपका वक्त आपकी घर वालों के लिए है, आपके जॉब के लिए है, लेकिन आपके लिए वक्त कहाँ है? अपनी सेल्फ केयर में आपका जो है वो जिम भी आ जाता है, आपके इवन यू नो टेकिंग टाइम टू गो आउट फॉर अ वॉक, टू हैव शावर्स, यू नो, टू लुक आफ्टर योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ किस तरह से आप तैयार होते हैं अपने खाने के लिए. अगर ये नहीं कि सिर्फ जो मिल रहा है वो खा लिया, यू नो, मेक सम एफर्ट टू स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ. अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप वो करें. अगर आपको किसी भी किस्म की हॉबी का शौक है, आप उसमें अपने लिए अपने पास वक्त निकालें. आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्री ऐप्स हैं माइंडफुलनेस की, उनको करें. आप अगर चाहें तो बहुत दफ़ा पेंटिंग और ड्राइंग जो है वो बहुत हीलिंग होता है और बहुत सूदिंग होता है, आप वो करें. म्यूज़िक, अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो अपने लिए वक्त निकालें. आप बैठें, आप अपनी जो है ना अपना चाय का कप, अपना कॉफ़ी का मग, और आप थोड़ी देर बैठकर आप वो सुने. अगर आपको कोई बाहर जाना, कोई जैसे कि लेक्स हैं या उस तरह का अच्छा लगता है, तो आप उधर बैठकर अपनी पसंदीदा जगह पे या अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ बैठकर बगैर कुछ बात किए, अगर आप दोस्त के साथ खामोश भी बैठे हुए ना, इट्स अ थेरेप्यूटिक टाइम. ये छोटी छोटी चीजें जिसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ वक्त लगता है, एंड यू हैव टू टेक आउट दिस टाइम फॉर योरसेल्फ.
1: एक बात है कि जब मैं स्ट्रगल के टाइम पे थी तो मैं इतना हार्ड वर्क कर रही थी कि मुझे अपने लिए टाइम निकालने के लिए गिल्टी फील होता था. मैं कहती थी मैं अपने लिए आधा घंटा मैंने निकाल लिया है, मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया है. मैं इस घंटे में कुछ कर सकती थी, मैं अपने बच्चों को देख सकती थी, मैं किचन में जाके कुछ कर देती, सफाई कर लेती या कुछ भी, तो मुझे गिल्टी फील होता था कि मैंने इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना. मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे बेचारे जो ये भी सोचते होंगे अपने लिए टाइम निकालना. बहुत सी खवातीन भी ऐसी हैं जो अपने लिए टाइम निकालने को ना वो समझती हैं ज़ाया करना, जबकि मुझे सिखाया गया कि अपने लिए टाइम निकालना, आप टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, उस टाइम को अच्छा यूज़ कर रहे हो अपनी वेलबींग के लिए.
0: ये जुर्म लगता है लोगों को,
1: मुझे भी लगता था,
0: वक्त निकाल रहे हैं.
1: मुझे लगता था, बिल्कुल
0: पते की बात की है नाहिद, कि ये जो गिल्ट है आपका कि आपने अपने लिए वक्त निकाल लिया, आपने अपने लिए एक घंटा निकाल लिया, आपने क्या जुर्म कर दिया, क्योंकि आपका कुछ काम रह गया, आपका कोई असाइनमेंट अभी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, या आपका कोई खाना पकना रह गया. ये लेकिन ये जो आपकी है ये इन्वेस्टमेंट अपने लिए है, और अगर आप सही होंगे तो पूरा घर चलेगा, और आप सही होंगे तो आपके साथ जो बाकी लोग जुड़े हुए वो सही रहेंगे.
1: कई लोग ताने भी मारते हैं कि अभी अच्छा तुम तो बड़ी बिजी हो, तुम फारिग बैठी हो, तुम तो ये कर रही हो, तुमने अपना लिए ये कर लिया है, तुम बैठ के टीवी देखने लग गई हो, तुम तो कहती हो तुम बड़ी बिजी हो. लेकिन कई घरों में ऐसा माहौल भी होता है कि वो आपको ताने मिलने लग जाते हैं.
2: And I would like to just touch up and say to the listeners as well that even if your friend, like Dr. Amin, you said, even if your friends can't come make it, go yourself, spend time for yourself. Some people rely on other people too much. That's where the problem comes. Like, yeah. I might rely on Dr. Amin, we're going for a coffee 11 o'clock, you don't come. Does that mean I don't go? I should be going to that coffee. I should be.
1: हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम इनकी कॉल लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो,
3: जी अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. यास्मीन, कैसी हैं आप? हाँ, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. बहुत शुक्रिया आपके टेलीफोन कॉल का. आप हमारे डॉक्टर से बात करना चाहेंगी?
3: जी, माशाल्लाह से सुन रही हूँ काफी देर से. माशाल्लाह से डॉक्टर सर भी और मैडम भी बहुत अच्छी बातें कर रही हैं जो हमें सुनने को मिल रही हैं, तो इससे हमारी जिंदगी में काफी काफी नशे वो करा जाते हैं जो उनके बारे में हम जान सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ.
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. आप क्या कहना चाहेंगी?
3: मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो और वो रुखसार साहब ने भी बोला और फैसल ने भी बोला है जो कि हम लोग आते हैं पाकिस्तान से, जब आते हैं तो हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। ये तो जाहिर सी बात है, आपसे कोई छुपी ढकी बात तो है कोई नहीं है, सब आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें इस स्ट्रगल से कैसे निकलना होगा ये हमें नहीं पता अभी, क्योंकि हम जिस स्ट्रगल में आ जाते हैं ना, हम तो बड़े ख्वाब लेके आते हैं पाकिस्तान से, जब आते हैं तो बहुत ज्यादा ख्वाब होते हैं, सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाते हैं लोग, एक सबज बाग की तरह दिखाते हैं कि सबज बाग दिखाया जा रहा है हमें, कि हमें वहां पे हिल जाके ये करेंगे वो करेंगे ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ अपोजिट होता है उसके, बरक्स जब आते हैं यहाँ पे तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा ही हम कह सकते हैं कि इतना इतना कुछ बर्डन होता है, हम लोग उनके लिए एक नौकरों की मानिंद होते हैं, बिल्कुल नौकरों की मानिंद, और अगर आगे से हम किसकी भी नहीं ले सकते, अगर हम कुछ बोलते हैं ना तो वो हमारी आवाज को दबा लिया जाता है। तो मेन चीज ये है कि इंसान तो इंसान ही होता है, इंसान हैवान तो हो नहीं सकता, लेकिन ये ट्रीट करते हैं हमें हैवानों की तरह, जब हैवानों की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब होगी ना,
1: बिल्कुल होगी।
3: मेन चीज ये है कि मैं यही कहती हूँ कि अक्सर मेरे साथ भी ऐसे इश्यूज हैं कि मैं कोई चीज करती हूँ तो मुझे पता होता है, कोई चीज रखती हूँ कहीं तो मुझे पता होता है बार दफा, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, अचानक से भूल जाती हूँ। फिर उसके बाद उसके अलावा एक इश्यूज ये भी है कि मैं ना अक्सर अपनी दोस्तों में फ्रेंडों में बातें वगैरह हो रही होती हैं, हंसी चल रही होती है, सब कुछ ऐसा हंसी मजाक हो रहा होता है, तो अचानक से मुझे पता नहीं क्या होता है तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। फिर लड़कियां अक्सर पूछती हैं कहाँ गायब हो, कहाँ गायब हो, क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता होता मैं क्या सोच रही होती हूँ, कहाँ चली जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता। तो मैं कहती हूँ कि ये कैसे इस ट्रॉमा से कैसे निकला जाएगा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं वो कैसे, कौन से लोग होते हैं जो अपने माइंड को साफ कर लेते हैं और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल दोबारा से।
1: डेफिनेटली मुझे कम्प्लीटली एहसास है आप जिस बैकग्राउंड से बात कर रही हैं, और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है अपने जॉब में भी और वैसे भी सोसाइटी में भी, तो आपने बहुत बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया और आपने बहुत ही मुनासिब तरीके से ये क्वेश्चन रेज किया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, क्योंकि ये भी बहादुरी होती है कि आप आके ऑन एयर क्वेश्चन करें और इतना अच्छा वैलिड पॉइंट उठाएं, और ये बहुत से लोगों के दिल में सवाल होंगे, तो हम डेफिनेटली डॉक्टर साहिबा से इसके बारे में बात करेंगे। और अभी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, कमर्शियल ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा से और जैफ से पूछेंगे कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। जी सामीन, यास्मीन ने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, बिल्कुल वही चौधरी रुखसार भाई की बात और फैसल की बात, उसी को ही आगे बढ़ा के। हमारा कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो चुका है, थोड़ा सा ओवरड्यू हो गया है, हम इस पे इसकी तरफ जाते हैं और वापस आके फिर हम डॉक्टर साहब से और जैफ से बात करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
4: Looking for a quality home to rent?
5: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744-62 or 077 900-35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: सामिन हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद. अब चार मिनट के बाद हमारी अजान ब्रेक है, तो क्या हम चार मिनट डॉक्टर साहबा और जब हम चार मिनट में इस यास्मीन की बात का जवाब दे पाएंगे या फिर हम
1: कुछ चीज़ों को हम टच कर सकते हैं ना ही, तो हम जाहिर इसको ब्रीफ रखते हुए हम बातें कर सकते हैं
0: और फिर हम इसको कैरी ऑन कर लेंगे अजान के बाद,
1: अजान के ब्रेक के बाद.
0: जी बिल्कुल ठीक.
1: तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका कॉल करने का. इतनी हिम्मत सब लोगों में नहीं होती इस कॉल करने की, टेक्स्ट करने की. बहुत बहुत मुश्किल बात है क्योंकि आप अपना आप किसी को जो है ना आप उसमें से एक अक्स जो है वो लोगों को देखने की उसको परमिशन दे रही हैं, जो बहुत मुश्किल होता है कि अपनी अपनी इतनी पर्सनल लाइफ में किसी को जो है उसको ये एक एक अलाउ किया जाए. लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात, जो बात मुझे पॉजिटिव लगी वो ये कि आपने कहा कि आप दोस्तों में बैठती हैं, वही बात जो अभी हमने कही, आप अपने लिए वक्त निकाल रही हैं. जो बात जिस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर रही हैं, ऐसा लगता है कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स ज़िंदगी में आए, जो कि सबके आते हैं और हर किसी का उसको परसीव करने का और डील करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, मुझे लगता है कि आपको जो है ये अगर ये आपने अपने आपस में अपने आसपास के लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है और वो नहीं रिजॉल्व हो रहा या फ्रेंड सपोर्ट इनफ नहीं है, तो आई थिंक यू शुड आपको जीपी से कंसल्ट करना चाहिए. और उनके पास आईएप्ट सर्विसेज होती हैं जिसके साथ में काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं. जीपी आपको एंटी डिप्रेसेंट्स भी पहले असेस करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो, क्योंकि पहले फ़ौरन के फ़ौरन दवाओं के साथ नहीं डील किया जाता, उनको आपको एंटी डिप्रेसेंट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर किसी किस्म की ट्रेंड साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो जीपी आपको कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को रिफ़र भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको साइकोथेरेपी के लिए अपॉइंटमेंट्स आएंगी और वो फिर स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो आपको इस बारे में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप कोप कर सकती हैं. अगर कोई किसी किस्म का इमोशनल अब्यूज़ या डोमेस्टिक अब्यूज़ है तो उसके मुतालिक भी हेल्प रेस कर लेने में कोई हर्ज नहीं है. जीपी के पास डिस्ट्रिक्ट नर्सेज होते हैं, उनके पास साइकियाट्रिक लियाज़ॉन नर्सेज भी होती हैं जो कि, और अगर नहीं है तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को रेफ़र किया जा सकता है जो कि इस मुतालिक देख सकती हैं. अगर आपको लगता है कि कोई स्कोप है सोशल वर्कर्स के इन्वॉल्वमेंट का तो आप जीपी के थ्रू ये काम भी कर सकती हैं. अगर जाहिर है सबसे पहले लोग कोशिश यही करते हैं कि घर में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, पर अगर नहीं हो सकती तो इसमें मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई आड़ नहीं है, क्योंकि आपको एक ही ज़िंदगी मिली है. आपका हक है कि आप अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें लेकिन अपना भी ख्याल रखें. अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर इसका असर पड़ रहा है तो यू शुड रेज इट.
0: बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि की थिंग है कि चीज़ को छुपाने से बेहतर है कि आप उसको एड्रेस करें. What do you think, Jazz?
2: Absolutely. If you hide things, they just get worse, as we've known in the past. Like, when you hide things, it's not going to make it easy. You have to go through difficult times, but speak to somebody, talk to somebody, tell them that how you're feeling, and inshallah, you get the answers. And you should always, what I've learned from the younger generation growing up as well is, if they hide it, when they get older, it comes out. So like you might think, oh okay, I won't tell nobody, I'll hide it away, 5-10 years, you're in your 20s. When you reach your 30s, late 30s, going on 40s, that's when you'll start noticing, I should have spoke to somebody when I was 19-20 years old, it's too late now. How do I deal with this? What do I do? Thoughts start coming back to your head. And it's hard to manage what's going on.
1: That's a very good point. It does come back to you. और आपकी वो चीज़ें डिसअपेयर नहीं होती हैं, इसे कहते हैं ना यू ब्रश इट अंडर द रग.
0: अच्छा,
1: चीज़ें डिसअपेयर नहीं होती हैं, वो चीज़ें आपकी लेटर लाइफ में आपके सामने आ सकती हैं और मुख्तलिफ शक्ल में. बिल्कुल, एक मुख्तलिफ शक्ल में कोई छोटे से छोटा ट्रॉमा वो तमाम पुरानी बातों को वापस ला सकता है, ट्रिगर कर सकता है. सो दैट्स
0: इसका यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि आप फेस योर डीमंस. अगर कोई आपके साथ इस तरह का मसला चल रहा है, आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ द लाइन या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पहले नहीं थी, अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप फौरन उस चीज को एड्रेस करें, फौरन उसका हल निकालें. आप ये सोचें कि चलो मैं इसको अभी दबा देती हूं और दबाने से वो बड़ा होकर, वो डीमन जो है वो बड़ा होकर प्रॉब्लम आपके सामने आएगा फ्यूचर में, इसलिए उसको फौरन एड्रेस करें. समीन, इसी बात को हम जारी रखेंगे. आप हम बढ़ेंगे अजान ब्रेक की जानिब और अजान ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे. अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो प्लीज़ हमें आप फ़ोन कर सकते हैं 01274-306666 पर. अभी फैसल का दोबारा फ़ोन है लेकिन हम उसको ऑफ एयर लेंगे क्योंकि अजान ब्रेक है. फैसल, आई विल टेक योर कॉल इन अ सेकेंड.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: सिर्फ दो पौंडना कन सलाने ना, एक पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: समीन वेलकम बैक अजान के बाद और हमारी एडवर्ट ब्रेक के बाद हम टाइम चेक करते हैं और हमारा फ्लैशबैक गीत का टाइम हो चुका है। फ्लैशबैक गीत के फौरन बाद डॉक्टर अहमद और जेफ से जो हमारी बहन ने क्वेश्चन किए थे और इसके अलावा हमारे पास और भी कॉल्स आए थे, एक कॉल मिस हो गया, प्लीज़ आप दोबारा हमें कॉल कर लीजिएगा, नंबर एंड होता है 51 पे। सॉरी मैं आपकी कॉल नहीं ले पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी लाइन पे, तो आप हमें वापस फ़ोन कर लीजिएगा तो फिर हम इन सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले करते हैं टाइम चेक।
5: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
4: जी, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:45, 45 मिनट्स पास्ट 1। बढ़ते हैं फ्लैशबैक गीत की जानिब। फ्लैशबैक गीत के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है।
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: जी हाँ, जाने जिगर जाने मन सुन रहे हो कि नहीं तमाम जाने जिगर जाने मन मेरे लिसनर्स, हम वापस आ चुके हैं गीत के बाद और डॉक्टर साहबा आपसे भी वही टॉपिक हम जारी रखेंगे, बात करेंगे और जैव आपसे भी जो यास्मीन ने, फैसल ने और चौधरी रुखसार साहब ने जो पॉइंट्स उठाए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहबा।
1: थैंक यू नाहिद। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इन्होंने, फैसल साहब ने कहा कि एक आवाज़ थी लेकिन 100 कहानियाँ थीं, 1000 ट्रॉमास हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यास्मीन ने तो हिम्मत की कॉल करने की, जो कि हिम्मत नहीं कर सकते। तो किस तरह से हमने बातें तो बहुत की हैं कि उस मुतालिक की क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन सोल्यूशन क्या क्या होते हैं।
0: हाँ जी, मैं चाहूँगी कि आखिरी इस सेगमेंट में, आखिरी हिस्से में प्रोग्राम के हम इसके सोल्यूशन की तरफ गौर करें,
1: तरफ आएँ। बिल्कुल। तो पहले तो उन लोगों के लिए कि जो लव्ड वंस हैं, जो कि सपोर्टिंग फैमिलीज़ हैं और जिनके जो अपने सामने देख रहे हैं कि उनके घर में किसी के साथ, चाहे वो उनकी औलाद हो या उनके भाई बहन हो या उनका कोई बड़ा हो जिसके साथ ये हो रहा हो, कि वो एज अ फैमिली मेम्बर क्या हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एज अ सेकेंड पर्सन आपको अपने लव्ड वन के लिए, जब आप ये देखते हैं कि कुछ चेंजेस आ रही हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि दे आर नॉट देयर यूजुअल सेल्फ, अगर उनके सेल्फ केयर में, उनकी यूजुअल प्रेजेंटेशन में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, वो अपने यूजुअल काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर कोई पढ़ाई में है तो उसके एकेडमिक गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, अगर कोई काम पर है वो तो उसे बहुत सिक लीव लेनी पड़ रही है, दे आर नॉट, यू नो, दे हैव लॉस्ट द मोटिवेशन टू स्टार्ट देयर डे, अपना दिन कैसे शुरू करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने काम को, अपने गोल्स को अचीव करना है, और जो कि पहले डेडिकेटेड था अब नहीं है, पहले दोस्तों में मिलता था अब दोस्तों में नहीं जाता, कोई थी लड़की वो अपना ख्याल रखती थी, उसके जो लाइक्स डिसलाइक्स थी अब देख रहे हैं कि वो चेंज हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा यू नो खाने पीने पर अपना ध्यान नहीं दे रहा, कोई अपने पेरेंट्स के साथ बैठता था या वो अपनी माँ या बाप उसके सपोर्ट थे, अब वो उनसे कुछ भी शेयर नहीं करता, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग, ये एक वार्निंग साइन है। तो आपने ये करना है कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता, नॉट जैसे कि आप किसी से डिमांड करो मुझे बताओ क्या हो रहा है, बिकॉज ऐसे कोई भी ओपन अप नहीं होगा,
0: नहीं होता।
1: तो आप कोशिश करें कि अगर उसका कोई ऐसा करीबी दोस्त है, अगर कोई आपका दूसरा सिबलिंग है जिससे वो करीब है, उससे पूछें कि मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है, उससे बात करो, उससे पूछो, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लिसनिंग से और एक सपोर्ट प्रोवाइड होती है तो उससे रिजॉल्व हो जाता है।
0: हाँ, जब आप कह देते हो ना तो आधा मसला तो हल हो जाता है उसी टाइम, एक दो बार निकल आता है आपके अंदर से वो चीज़,
1: और आपको ये भी तो लगता है कि कोई है, आपको ना ये बहुत मैटर करती है कि आपको ये लगे कि somebody cares for you, और आप पांच दफ़ा पूरे घर में, पूरे भरे पूरे घर में आप अकेले हो जाते हैं क्योंकि आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता। तो अपने आप को बदलें और उसके लिए एक लिसनिंग ईयर जो है प्रोवाइड करें अपनी फैमिली के लिए, अपने जिन जो जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ बैठ कर बात करें, और ये तो कोशिश करें कि वो बंदा यकीन करे कि हर चीज़ का सलूशन है, क्योंकि ये चीज़ें सेल्फ हार्म से सुसाइडल थॉट्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं और बहुत तेज़ी से बंदा फ्लक्चुएट करता है, इसका पता ही नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद अगर मामला सिर्फ डिस्कशन से और रूटीन चेंज करने से सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस बंदे को ये कन्विंस करना कि तुम प्रोफेशनल हेल्प लो। अमूमन GPs के ऊपर जो है वो हमारा जो है वो ये होता है, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिले होते या कॉल्स ड्रॉप होती हैं, तो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं हम GP को कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप GP को कांटेक्ट करेंगे, GP से अपॉइंटमेंट लें और उसे सीरियसली ये बात कहें कि आई हैव बीन ट्राइंग टू डील विद इट फॉर सम टाइम और ये चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही, तो वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे डिस्ट्रिक्ट नर्सेस के थ्रू या GP के थ्रू। आप IAPT सर्विसेज, जो मैंने कहा IAPT IAPT सर्विसेज उनको अवेलेबल होती हैं, वो उससे काउंसलर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप GP के थ्रू नहीं जाना चाहते तो देर आर लॉट्स ऑफ चैरिटीज जो कि ऑनलाइन है, जिसमें आप अपने लिए या अपने प्यारों के लिए जो है वो बात कर सकते हैं और उनसे मदद
0: सपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल।
1: उसके बाद अगर आप GP के थ्रू जा ही रहे हैं, अगर वो आपको मेडिकेशन ऑफर कर रहे हैं, तो आप मेडिकेशन के बारे में रिसर्च कर लें। एक लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स होती है जिससे लोग डर जाते हैं और वो यू नो एक तरह से उन्हें डिटर कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट गिव इट अ गो। दवाई हर चीज़ का इलाज नहीं होती और दवा फौरन के फौरन हेल्प भी नहीं करती। एंटी डिप्रेसेंट्स को टाइम लगता है एक्ट होने में और उसको टाइट्रेट करने में टाइम लगता है। इस दौरान आपको, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, तो उसका सपोर्ट बनना है, उसकी हिम्मत बढ़ाते रहना है। अगर अपने लिए है तो अपने लिए भी याद रखना है कि दवा को असर करने में टाइम लगता है। अगर बात उससे रिजॉल्व नहीं होती तो फिर GP से बात करके आगे मजीद जो है कम्युनिटी टीम का रेफरल लेना, ये भी किया जा सकता है।
0: बहुत दफ़ा ये भी कहा जाता है, हमारे एक लिसनर ने, कॉलर ने बात की थी और मुझसे ये कहा था कि आप ये पूछें कि लोग आराम से कह देते हैं खुश रहा करो, कैसे एक बंदा डिप्रेस हो रहा है कैसे वह खुश रहा करे, क्या क्या करना चाहिए? आम तौर पे लोग यही कहते हैं ना, खुश रहा करो, बस छोड़ो छोड़ो सब चीज़ों को। एंड यास्मीन ने भी ये बात की थी कि किस तरह से वो अपने आप को उस चीज़ के अंदर, अपने उस ट्रॉमा से निकले, कैसे खुश रहा करें।
1: नाहिद, सबसे पहला कदम ये होता है कि स्मॉल स्टेप्स, स्मार्ट गोल्स, छोटे छोटे स्टेप। जैसे कि आज मैं कोशिश करूंगा कि अगले चंद दिनों में मैं टाइम पर सोऊं, टाइम पर उठूं। सिर्फ अगर ये छोटा स्टेप होता है ना, तो उसे एक अपने लिए गोल तय कर देना। मैं इस हफ्ते हफ्ते में 3 दफ़ा नहाऊंगी, लाइक द पर्सन इज बीन नॉट हैविंग यू नो लुकिंग आफ्टर द पर्सनल केयर। मैं हफ्ते में 3 दफ़ा नहाऊंगी। आई विल वेयर समथिंग नाइस, यू नो, अपने लिए, अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो छोटे छोटे प्रैक्टिकल गोल्स रखें।
0: और अचीवेबल गोल्स,
1: अचीवेबल गोल्स हैं। आज आज मैं दिन 10 मिनट के लिए वॉक पे जाऊंगी, 10 मिनट अपनी जिंदगी में निकाले जा सकते हैं ना।
0: exactly.
1: ये छोटे छोटे गोल्स, और फिर उसके बाद अपने आप उसको आगे बिल्डअप करें।
0: और जब एक छोटा गोल अचीव हो जाता है तो आपके ब्रेन से एड्रेनलिन निकलता है, तो फिर क्या होता है, जब आपको वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है, फिर आप आगे भी करते जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब वी विल close the conversation now because the time is really really running out. So hum aapse puchna chahenge ki aap is bare mein kya kehna chahte ho.
2: I just want to say, I want to give advice, like alhamdulillah Dr. Ahmed has raised all the points. So I just want to say, you know, in life you will be let down by people, so you know, you have to prepare yourself for that. For example, I've noticed, like, as I've got loads of speaking to friends and colleagues and stuff, they've spoke to me like, oh, they've got a they're going out with a fellow colleague for a cup of tea or something, the person can't make it, so that means they didn't go, but that little thing meant so much to somebody, because somebody's let them down, it's let them down. That one moment that was probably they're looking forward to it the whole week, or going for that coffee, yeah, I'm going to go with Dr. Ahmed, I can't wait to go for the coffee with Dr. Ahmed to Monday 10 o'clock, never happened. But that does not mean you don't go. Mm-hmm. Why can't you go sit down yourself, have that coffee, take that time for yourself, because you needed it. So in life, people will let you down, but don't let it get to you. Go yourself. The plan is not met by somebody else, but you make sure you go.
0: एग्जैक्टली प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर पे पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने बहुत मुअज्जज़ मेहमानों का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये कहना चाहूंगी कि अपने लिसनर्स को कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी जब तक हम डाई नहीं हो जाते। मुझे तो लगता है जो हरकतान ने साड़ियाँ डाई करके ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने आने तो ऐसा है कि प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। अपने आप को इतना मज़बूत बनाएं कि आप इनसे मुकाबला कर सकें।
1: बिल्कुल सही कह रही है अपना ही। हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें जो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। और इस बदलने के लिए बहुत बड़ा चेंज लाना ज़रूरी नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस लाएँ और पुरउम्मीद रहें।
2: No, that's absolutely right.
0: Okay, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: From the Skyview Centre at 2, former midwife Donna Ockerton has launched her inquiry into maternity services at Leeds, meeting families affected. It's after her report looking at Nottingham found systemic failures where mothers and babies were let down. A group of lenders seeking to take over Thames Water are plotting a legal challenge if Andy Burnham's government tries to nationalise it. The troubled utility firm is weeks away from running out of money. Here's our political correspondent, Rob Powell.
5: Many on the left in Labour would like to see that as a kind of jumping off point, an entry point to full nationalisation. And that is why you are now seeing a group of investors linked to Thames Water gearing up for a possible legal fight.
4: Meanwhile, Andy Burnham spending the weekend preparing to move into Downing Street after being confirmed as the new Labour leader. He says he won't be rushed into announcing appointments before becoming Prime Minister, though Home Secretary Shabana Mahmood is favourite for the key job of Chancellor. Travel experts say traffic's moving relatively well at the port of Dover despite fears of summer chaos caused by the EU's new border checks. 10,000 cars are expected to board ferries there today. Sport now, and Donald Trump's joined the criticism of Thomas Tuchel's defence-minded approach to England's World Cup defeat. The US president's challenged what he calls the manager's unusual deployment of his golf buddy, Harry Kane. His side slumped to a 2-1 loss against Argentina following the semi-final changes. Ex-England defender Rio Ferdinand's also questioned the tactics.
6: The identity and the profile of player that he picked, I'm not saying they can't play, but they're probably their super strengths would be more in terms of physical running power and providing big moments. But the manager has his right, and that's his job, to pick the players that he wants for his team.
4: England are getting ready for tonight's bronze medal match against France. And Ferrari's Lewis Hamilton faces a battle to take part in qualifying next hour for the F1 Belgian Grand Prix. The British driver crashed out in the last few seconds of final practice. That's the latest. I'm Chris Milligan.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030। जिंदगी

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

यूजलेस। ओके।

0: रोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कोई मजदूरी नी, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: जीत ओ देखो कितना सोना पटोला
1: किथे ओ किथे ओ देखो इतनी मारे है। हाँ ओ दा पे भी पीछे या छत्तर तो नहीं खाने
0: ओ यार अपने मारे
1: हो जा तैयार कंपोज योरसेल्फ
2: एक्सक्यूज मी

0: किया
1: वैथे बैठा तपी जाना चल चलिए ओ खन्ने च मिस पूजा दा शो लगा ओने मंगी माल दा लिखिया नवा गीत गाया बड़ा वधिया चलिए
0: और चल फिर।